गुण में गुणी समाया, ए जग में मोह है पासारा, मानव अज्ञानी अंध अंधारा, तंदे तावत जन्म गवाया, बिन नावे दुख पाया, कर्म होवे ता सतगुर पाए, होमे मैल शब्द जलाए, मान निर्मल क्या रतन चानन, अज्ञान अंधेर गवाया, तेरे नाम अनेक कीमत नहीं पाई, सच नाम हर हिरदे वसाई, कीमत कौन करे प्रातेरी, तू आपे सहज सुमा।

तोलाया। सेवक सेवह करे अरदास, तू आपे मेर बहाले पास। सबना जिया का सुखदाता, पूरे कर्म ते आया। जात सा संजम जे सच कमावे, यो मन निर्मल जे हर गुण गावे। इस बिख में अमृत प्राप्त होवे, हर जू मेरे पाया। जिसनु बुझाए सोई बूझे, हर गुण गावे अंदर सूझे। होमे मेरा ठाकर खाए, सहजे ही सद पाया। बिन कर्मा होर फिरे कनेरी, मर मर जम्मे चुके ना फेरी। बिख का राता बिख कमावे, सुख न कबहू पाया। बहुते पेख करे पेख तारी, बिन शब्दे होमे कने ना मारी। जीवत मरे ता मुक्त पाए, सच्चे नाए समाया। अज्ञान तृष्णा इस तने जलाए, तेदी बूझे जे गुर शब्द कमाए। तन मन शीतल क्रोध निवारे, होमे मार समाया। सच्चा साहेब सच्ची वडियाई, गुर प्रसादी विरले पाई। नानक एक कहे बेनंती, नामे नाम समाया। मारू महला तीजा, नदरी भगतां लहु मिलाए। भगत सलाहन सदा लिवलाए, तौ सरनाई उभरे करते। आपे मेल मिलाया, पूरे शब्द भगत सुहाई। अंत सुख तेरे मन पाई, मंत्र सच्ची भक्ति राता। सच्चे स्यो चित लाया, होमे विच सजले शरीरा। कर्म होवे पेटे गुरपूरा, अंतर ज्ञान शब्द बुझाए। सदगुर ते सुख पाया, मन अंधा अंध कमाए। बहु संकट जोनी फरमाए, जम का जेवड़ा कदे ना कटे। अंते बहु दुख पाया, आमन जाना शब्द निवारे। सच नाम रखे उरथारे, गुर के शब्द मरे मन मारे। होमे जाए सुमाया, आमन जाने पर जब गोई। बिन सदगुर थिर कोई ना होई। अंतर ज्योत शब्द सुख वसया, ज्योति ज्योत मिलाया। पांच दूत चितवे विकारा, माया मोह का उपसारा। सदगुर सेवे ता मुक्त होवे, पांच दूत बस आया। बाज गुरु है मोह गुबारा, फिर फिर डुबे वारो वारा। सदगुर भेटे सच दृढ़ाए, सच नाम मन पाया। साचा दर साचा दरबारा, सच्चे सेवे शब्द प्यारा। सच्ची तुन सच्चे गुण गावा, सच्चे माए सुमाया। करे अंदर को कर पाए, गुर के शब्द सहज सुभाए। ओथे सोग वियोग ना व्यापे, सहजे सहे सुमाया। दूजे पाए दुष्टा का वासा, पौंदे फिरे बहु मोह प्यासा। कुसंगत बह सदा दुख पावे, दुखो दुख कमाया। सदगुर बाजो संगत ना होई, बिन शब्दे पार न पाए कोई। सहजे गुण रवे दिन राती, ज्योति ज्योत मिलाया। काया बिरख पंखी विच वासा, अमृत चुगे गुर शब्द निवासा। उड़े ना मूले ना आवे ना जाही, निरकर वासा पाया। काया सोधे शब्द विचार है, मोठ गौरी परम निवार है। आपे कृपा करे सुखदाता, आपे मेल मिलाया। सदगी नेड़े दूर न जानो, गुर के शब्द नजीक पछाणो। बिगसे कमल किरण परगासे, प्रगट कर देखाया। आपे करता सच्चा सोई, आपे मार जीवाले अवर न कोई। नानक नाम मिले वडियाई, आप गवाए सुख पाया। मारू सोलहे महला चौथा, एक ओंकार सदगुर प्रसाद। सच्चा आप सवार नहारा, अवन सूस बीजी कारा। गुरमुख सच वसे कट अंतर, सहजे सच समाई हे। सबना सच वसे मन माही, गुर प्रसादी सह समाही। गुर गुर करत सदा सुख पाया, गुर चरणी चित लाई हे। सदगुर है ज्ञान सदगुर है पूजा, सदगुर सेवी अवर ना दूजा। सदगुर ते नाम रतन तन पाया, सदगुर की सेवा पाई है। बिन सदगुर जो दूजे लागे, आवे जाए प्रमरे अपागे। नानक तिन की फिर गद होवे, जे गुरमुख रह सरनाई है।
ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਗੇ ਸਾਚੀ ਤਾ ਗੁਰ ਤੇ ਮੰਗੂ ਨਾਮ ਅਜਾਚੀ ਹੋ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਹਰ ਜੀਓ ਰਖ ਲੇ ਵੋ ਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੋ ਆਇਆ ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਆਇਆ ਤੇ ਅਣਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵਜੇ ਤੁਨ ਬਾਣੀ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿ ਸਮਾਈ ਹੇ ਜਿਨ ਕੋ ਕਰਤੇ ਤੁਰ ਲਿਖ ਪਾਈ ਅਨ ਦਿਨ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰਤ ਵਿਖਾਈ ਬਿਨਸ ਗੁਰ ਕੋ ਸੀਜੇ ਨਾਹੀ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਚਿਤ ਲਾਈ ਹੇ ਜਿਸ ਪਾਵੇ ਤਿਸ ਆਪੇ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ

मेरी बिनस गई हो मैं मत मेरी, अंगीकार किया प्रभ अपने जग में शोभ सुहाई है। जय जय कार्ज पो जगदीश है, बल बल जाई प्रभ अपने ईस है, इस बिन दूजा अवर न दिस है, एका जगत सुबाई है। सत सत सत प्रभ जाता, गुर प्रसाद सदा मन राता, सेमर सेमर जीव है जन तेरे, एक अंकार समाई है। भगत जना का प्रीतम प्यारा, सबे उदाहरण खसम हमारा, सिमर ना पुन्नी।

एक करबाई एक भूखे एक तृप्त अघाए सबसे तेरा पारणा आपे सत सत सत साचा ओत पोत भगत संगराचा आपे गुप्त आपे गए प्रगट अपना आप सारणा सदा सदा सद हो मनहारा ऊंचा अगम अथाओ अपारा ऊने परे परे पर ऊने ये चलत स्वामी के कारणा मुगसाला ही सच्चे साहा नैनी पेखा अगम अथाहा करनी सुन सुन मन तन हरिया मेरे साहेब सगल उदाहरणा कर कर वेखे कीता अपना जी जंत सोई है जपना अपनी कुदरत आपे जाने नदरी नदर निहालना संसभा जे वैसे प्रापासे आनंद मंगल हर चलत तुमासे गुण गावे अनघत तुन बाणी तै नानक दा चितारना आमन जाना सब चलत तुम्हारा कर कर देखे खेल अपारा आ उपाय उपामनहारा अपना की या पालना सुन सुन जीवा सोए तुम्हारी सदा सदा जाई बलिहारी दुए कर जोड़ सिमरो दिन राती मेरे स्वामी अगम अपारना तुद बिन दूजे के सालाही एको एक जपी मन माही हुक्म बूझन पए निहाला ए भगतां की कालना गुर उपदेश जप के मन साचा गुर उपदेश राम रंग राचा गुर उपदेश टुटे सा बंधन त्यो परम मोह पर जालना जय राखे सोई सुख थाना हे जे होए सोई पल माना बिन से बैर नाही को बैरी सब एको हे पालना डर चूके बिन से अंधियारे प्रड पए प्रापुरख निरारे आव छोड़ पए सरनाई जिसका साथ कालना ऐसा कोवड़ पागी आया आड़ पैर इन खदम त्याया ते जन के संग तरे सब कोई तो परवार सुधारना ए बख्शीस खदम ते पावा आड़ पैर कर जोड़ त्यावा नाम जपी नाम सहज समावा नाम नानक मिले उचारना मारू महला पंजवा सूर देखना फूल गवारा मिसन मुहारा चूड़ पसारा जग में कोई रहन न पाए नेत्र एक नारायणा गुरपुरे की पौसरणाई मोसूसा परम मटाई एको मंत्र दृढ़ाए औखद सच नाम रिद गायना ज नामे को तरसे बो देवा सगल पत जा की कर दे सेवा अनाथा नाथ दीन दुख पंजन तो गुरपुरे ते पायना होर द्वारा कोई न सूझे तिर पवन तावे ता किसु न बूझे सतगुर साओ भंडार नाम जिस यो रतन तसे ते पायना जाकी तूर करे पुनीता तुर नर देव न पावे मीता सत पुरख सतगुर परमेसर जिस भेड़त पार परायना पार जात लोड़े मन प्यारे काम तेन सोही दरबारे तृप्त संतोष सेवा गुरपूरे नाम कमाए रसायना गुर कै शब्द मरे पंच धातु पए पार ब्रह्म होवे निर्मला तू पार जा फेटे गुरपूरा ता पारस प्रसिद खायना कई बैकुंठ नाही लवे लागे मुक्त बपड़ी पी गया नी त्यागे एक अंकार स गुर ते पाई है हौ बल बल गुर दरसायना गुर की सेव न जाने कोई गुर पार ब्रह्म अगोचर सोई जिसनु लाए लए सो सेवक जिस बड़ पाग मथायना गुर की महिमा वेद न जाने तुष मात तुन सुन वखाने पार ब्रह्म अपरम पर सदगुर जिस सिमरत मन सीतलायना जाकी सोए सुनी मन जीवे।

करो दया किरमायणा निर्गुण को संग लेर लाए कर कृपा मुहे टहले लाए पखा फेरो पीसो संत आगे चरण तोये सुख पायना बहुत द्वारे प्रम प्रम आया तुमरी कृपा ते तुम शरण आया सदा सदा संते संग रख हो यो नाम दान देवायना पै कृपाल गुसाई मेरे दर्शन पाया सतगुर पूरे सुख सहज सदा आनंदा नानक दास दसायना मारू सोलहे महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सिमरे धरती अर आकाशा सिमरे चंद सूरज गुण तासा पौन पानी बैसंतर सिमरे सिमरे सगल उपार जना सिमरे खंड दीप सब लोवा सिमरे पाताल पुरिया ससोवा सिमरे खाणी सिमरे बाणी सिमरे सगले हर जना सिमरे ब्रह्मे विष्णु महेशा सिमरे देवते कोड़ते तीसा सिमरे जख दैंत सब सिमरे अगणत न जाई जस गना सिमरे पस पंखी सा पूता सिमरे बाण पर्वत अवधूता लता बली साग सब सिमरे हरा भरे या स्वामी सा मना सिमरे थूल सूक्ष्म सब जनता सिमरे सिर साधक हर मंता गोवत प्रगट सिमरे प्रा मेरे सगल पवन का प्रवतना सिमरे नर नारी आसरमा सिमरे जाद जोश सा वरना सिमरे गुणी चित्र सा बेते सिमरे रैणी अर देना सिमरे घड़ी मूर्त पल निमखा सिमरे काल अकाल सोच सोचा सिमरे सुन सातर संयोगा अलख न लकीये एक खिना करन करामन गार सुवामी सगल कटा के अंतर जामी कर कृपा जिस भगती लाव जन्म पदार्थ सोजना जाके मन रूठा प्रव्यापना पूरे कर्म गुर का जप जपना सर्व निरंतर सुप्रा जाता बोढ़ न जोनी परम रोना गुर का शब्द से मन जाके दुख दर्द प्रमता का भागे सुख सहज आनंद नाम रस आनंद वाणी सह तुना सो तनवंता जिन प्रत्याया सो पतवंता जिन साध संग पाया पार ब्रह्म जाके मन उठा सो पूर्व कर्मा नाशिरा जल थल मईल स्वामी सोई अवर न कही गए दूजा कोई गुर ज्ञान अंजन काट्यो प्रम सगला अवर न दिसे एक बिना ऊचे ते ऊंचा दरबारा तैन न जाई अंत न पारा गैर गंभीर अथा स्वामी अतुल न जाई क्या बिना तू करता तेरा सब किया तुझ बिन अवर न कोई बिया आद मध अंत प्रतु है सगल पसारा तुम तना जम दूत किस निकट न आवे साध संघर कीर्तन गावे सगल मनोरथता के पूर्ण जो श्रवणी प्रभ का जस सुना तू सबना का सब को तेरा सत्य साहेब गैर गंभीरा कौ नानक सेई जन उत्तम जो पावे स्वामी तुम मना मारू महला पंजवा प्रसमरथ सर्व सुख दाना सिमरो नाम हो मेहरबाना हर दाता जी जंत पेखारी जान बांछे जा चंगना मांगो जन तूर परम गद पावो जन्म जन्म की मैल मिटावो दीर्घ रोग मिटे घर औखद हर निर्मल रापे मंगना श्रावणी सुनो बिमल जा स्वामी एका ओट तजो बिख कामी निव निव पाए लगो दास तेरे कर सुकृत ना ही संगना रसना गुण गावे हर तेरे मिटे कुमाते अवगुण मेरे सेमर सेमर स्वामी मन जीवे पांच दूत ताज तंगना चरण कवन जब हो चरिये संत संग मेरे सागर तरिये अर्चा बंधन हर संत निवासी बौड़ जोन ना नंगना दास दासन को कर लिहो गोपाला कृपा निधान दीन दयाला सखा सहाई पूर्ण परमेश्वर मिल कदे न हो भी पंगना मान तन अर्प तरी अराग जन्म जन्म का सोया जागे जिसका सा सोई प्रतपालक हत्यागी हो मे हंतना जल त पूर्ण अंतर जामी खड़का रवे अशल स्वामी परम पीत खोई गुरपूरे एक रवे असर मंगना जल कद पेखो प्रभ सुख सागर हर तोड़ भंडार ना ही रतनागर आगे अगा कश्मित नहीं पाइये तो बूझे जिस किर पंगना जाती शीतल मन त ठंडा जन्म मरण की मिटवी डंजा कर गे काढ़ लिगे प्रवे अपने हमे तार धिर टंगना एको एक रवैया सब ठाई जिबन दूजा कोई नाही
ਆਦ ਮੱਧ ਅੰਤ ਪ੍ਰਵਰਵਿਆ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੂਜੀ ਪਰਮੰਗਨਾ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰ ਕਰਤਾ ਗੁਰ ਸਤਭਗ ਸੰਦ ਗੁਰ ਜਪ ਜਾਪ ਜਪਤ ਫਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆਨ ਦੀਪਕ ਸੰਤ ਸੰਗਨਾ ਜੋ ਪੇਖਾ ਸੋ ਸਭ ਕੇ ਸੁਆਮੀ ਜੋ ਸੁਣਨਾ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਬਾਨੀ ਜੋ ਕੀਨੋ ਸੋ ਤੁਮੇ ਕਰਾਇਓ ਸਰਣ ਸਹਾਈ ਸੰਤ ਹੈ ਤਨਾ ਜਾਤਕ ਜਾਤੇ ਤੁਮੇ ਆਰਾਧੇ ਪਤ ਪਾਵਨ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸਾਦੇ ਏਕੋ ਦਾਨ ਸਰਵ ਸੋ ਗੁਣ ਨਿਧ ਆਨ ਮੰਗਰਨ ਹੇ ਕਿੰਚਨਾ ਕਾਇਆ ਪਾਤਰ ਪ੍ਰਭ ਕਰਨੇ ਹਾਰਾ ਲੱਗੀ ਲਾਗ ਸੰਤ ਸੰਗਾਰਾ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ ਬਣੀ ਹਰ ਬਾਣੀ ਮਨ ਨਾਮ ਜੀਠੇ ਰੰਗਣਾ ਸੋਲ ਹੈ ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਫਲਿਆ ਅੰਤ ਕਲਾ ਹੋਏ ਠਾਕੁਰ ਚੜਿਆ ਅੰਤ ਬਿਨੋਦ ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਹਰ ਪੁੰਚਨਾ ਮਾਰੂ ਸੋਲ ਹੈ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਸੇਵਕ ਕੀਤਾ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਦੀਤਾ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਸਭ ਤੂੰ ਹੈ ਤੂੰ ਹੈ ਹੈ ਨਾਹੀ ਕਿਸ ਅਸਾੜਾ ਤੁਮੇ ਪਠਾਏ ਤਾਂ ਜਗ ਮੈਂ ਆਏ ਜੋ ਤੂ ਪਾਣਾ ਸੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਉਹ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸ਼ੂ

रही केश गोवर्धन तारी मुरली मनोहर हर रंगा मोहन माधव कृष्ण मोरारे जगदीश हर जीव असर संघारे जग जीवन अविनाशी ठाकुर कड़कड़वासी है संगा तरणी तर ईश नरसिंह नारायण।

मस्तक लाए परम पद पाव, जे प्राप्त सो पावेगा। जिनको कृपा करी सुखदाते, तिन साधु चरण लैर दे पराते। सगल नाम निधान तिन पाया, अनघा शब्द मन वाजंगा। किरतम नाम कथे तेरे जेबा, सत नाम तेरा परा पूर्वला। कहो नानक भगत पय शरणाई, दियो दर्शमन रंग लगा। तेरी गतमत तू है जान है, तू आपे कथे तय आप बखाने। नानक दास दासन को करियो, अर भावे दासा राज संगा। मारू मोहल्ला पंजवा, अल्ले अगम खुदाई बंदे। छोड़ ख्याल दुनिया के तंदे, होए पै खाक फकीर मुसाफर। यो दरवेश कबूल दारा, सच निवाज यकीन मुसल्ला। मनसा मार निवारो आसा, दे मसीत मन मौलाना। कलम खुदाई पाक खरा, सरा सरीयत ले कमावो। तरीकत तरक खोज टो लावो, मारफत मन मारो अबदाला। मिलो हकीकत जिद फिर ना मरा, कुरान कतेब दिल माए कुमागी। दस औरात रखो बदराही, पंच मर्द सिदक ले बद हो। खैर सबूरी कबूल परा, मक्का मेर रोजा पै खाका। इस्त पीर लफ्ज कुमाए अंदाजा, हूर नूर मुस्क खुदाया। बंदगी अल्लाह आला हुजरा, सच कमावे सोई काजी। जो दिल सोदे सोई हाजी, सो मुल्ला मलऊन निवारे। सो दरवेश जिस सिफत तरा, सभे वस्त

इनकी तूड़ मांगे मन मेरा, जिन विसरे नाही काहू बेरा। इनके संग परम पद पाई, सदा संगी हर नाल का, साजन मीत प्यारा सोई। एक दृढ़ाए दुर्मद खोई, काम क्रोध अहंकार तजाए, ते जन को उपदेश निर्माल का, तुद बिन नाही कोई मेरा। गुर पकड़ाए प्रभु।

ना कोए, पूछो जाए सियाणिया दुख काटे मेरा कोए। सतगुर साचा मन वसे साजन उत ही ठाए, नानक मन तृप्तासीए

जे लोचे सब कोए नानक मन ही को मन मारसी जे सतगुर पेटे सोए पौड़ी दोवे तरफा उपाई होन विच सगत से वस सगती किने ना पायो फिर जन्म बिनास गुर सेवे सांत पाई है जप सास गिरास सिमरत सास्त सोध देख

मगना पावे, हर नाम ध्यावे दिन सरात, हर नाम सुमावे। श्लोक महला पहला, सुनिए एक वखाणिए, सुरग मृत पयाल, हुक्म न जाई मेटिया, जो लिखिया सो नाल। कौन मुआ कौन मारसी, कौन आवे कौन जाए, कौन रसी नानका, किसकी सुरत सुन।

पौड़ी, तू अगवन दयाल बेअंत, तेरी कीमत कहे कौन, तू सृजा सब संसार, तू नायक सगल पौन, तेरी कुदरत कोई ना जाने, मेरे ठाकुर सगल राउन, तू अपड़ कोई ना सके, तू उबनासी जग उदरण, तू थापे चारे जुग, तू करता सगल तरण, तुद आमन जाना किया, तुद लेप ना लगे त्रेण, जिस होवे आप दयाल, तिस लाभ है सदगुर चरण, तू होर उपाय ना लभगी, अवनासी सिष्ट करण, दखणे महला पंजवां, जे तू वत्ते अंगणे, अब तरत सुहावी होय, एक सकंते भारी, मैंडी वात ना पुछे कोए महला पंजवां, अबे टोल सुहावणे, सौ बैठा अंगण मल, भाई ना वञे बिरथड़ा, जो कर आवे चल महला पंजवां, सेज विशाई कंत कू, किया हब सीगार, इती मंझ ना सुमावई, जेगल पैरा हार पौड़ी, तू पार ब्रह्म परमेसर, जोन ना आवही, तू हुक्मी साजे श्रेष्ट, साज सुमावही, तेरा रूप न जाई लखया, क्यों तुझे ते आवही, तू सब मैं वरते आप, कुदरत देखावही, तेरी पगत परे पंडार, तोट न आवही, एह रतन जवेहर लाल, कीम ना पावही, जिस होवे आप दयाल, तेस सदगुर सेवा लावही, कदे न आवे तोट, जो हर गुण गावही, दखणे महला पंजवां, जामु पसी हठ मैं, पिरी बिहिंजे नाल, हब्बे दुख उलायम।

न जानही दुर्जन सेती नेहो तू कै गुण हरंग मानही महला पंजवा नानक जिस दिन कड़ी ना जीवना विसरे सरे ना बिंद तेस सिंह क्यों मन रूसी है जिसे हमारी चिंद महला पंजवा रते रंग पार ब्रह्म कै मन तन अत गुलाल नानक विण नावे आलू दया जिती होर ख्याल पवड़ी हर जियो जां तू मेरा मित्र है ता क्या मैं काड़ा जिन्नी ठगी जग ठगया से तुद मार निवाड़ा गुर पौजल पार लंघाया जिता पावाड़ा गुरमती सब रस भोगदा।

मन के अंधे आपना बूझो काए बुझावो पाई माया कारण विद्या बेचो जन्म अविरता जाई नारद बचन व्यास कहत है सुख को पूछो जाई कहे कबीर रामे राम छूटो नाए त बूढ़े पाई बने बसे क्यों पाई है जौला मनोना तरे विकार जे घर बन संसर किया ते पूरे संसार सार सुपाई गे रामा रंग रवो आत्मय राम।

कहे तो कबीर सुनो रे संतो, साध संगत तर जाएगा, अराग मारू बाणी रविदास जीओ की, एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद ऐसी लाल, तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा, माथे छदर तरे रखाओ, जाकी शोत जगत को लागे, ता पर तुही ठरे, नीचे ऊच करे मेरा गोविंद, काहू ते ना डरे, नाम देव कबीर तलोचन, सदना सैन तरे, तय रविदास सुनो रे संतो, हर जीव ते सवै सरे, मारू सुख सागर सुर तर चिंता मान, काम ते भजा के रे, चार पदार्थ अष्ट महा सिद्ध, नवृद कर तलता के, हर का हर ना जब सरसना, अवर सब शाड बचन रचना रहाओ, नाना ख्यान पुराण वेद वेद, चौतीस अक्षर माही, व्यास विचार कहो परमार्थ, राम नाम सरनाही, सहज समाध उपात रहत होए, बड़े पाग लिव लागी, कहे रविदास उदास दास मत, जन्म मरण पै भागी, तुखारी संत महला पहला, बारे माहा एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद, तू सुन किरत करम्मा पुरब कमाया, सिर सिर सुख सहम्मा देसो तू पल, हर जना तेरी कागत मेरी, हर बिन कड़ी ना जीवा, प्रेबाज दुहेली गोए ना बेली, गुरमुख अमृत पीवा, रचना राज रहे निरंकारी, ब्राह्मण कर्म सुकर्मा, नानक पंथ निहाले सातन, तू सुन आत्म रामा, बाबी गा प्रयो बोले, कोकल बाणिया सातन सबरस चोले, अंक समाणिया हर अंक समाणी जा प्रा पाणी।

सुजान विधाता चंचल जगत सुबाया ज्ञान ध्यान गुण अंक समाने प्रपाणे ता पाया गीत नाद कवत कवे सुन राम नाम दुख पग नानक सा तन नहा प्यारी अब भक्ति पिर अग ओह तुखार पड़े वाण त्रैण रस सुख आपत की नाही मन तन वसै मुखे मन तन रब रहया जग जीवन गुर सबदी रंग माणी अंडज जेरज सेतज उदभुज घड़ घड़ जोत समाणी दर्शन देहो दया।

सुनो प्रीतम गुर शब्द मन समझावो तुखारी शांत महला चौथा एक ओंकार सदगुर प्रसाद अंतर प्री प्यार क्यों पिर बिन जीविए राम जब लग दर्शन होए क्यों अमृत पीविए राम क्यों अमृत पीविए हर बिन जीविए तिस बिन रहन न जाए।

अदृष्ट अगोचर पकड़िया गुर सबदी हौ सतगुर कै बलिहारिये सतगुर आगे सीस पेट देओ जे सतगुर साचे पावे आपे दया करो प्रदाते नानक अंक समावे तुखारी महला चौथा हर हर अगम अगाध।

माई संत संग जागी प्रेरंग देखे जपती नाम निधानी रहाओ। दर्शन प्यास लोचन तार लागी बिसरी त्यास बडानी अब गुर पायो हुए सहज सुखदायक।

पंच दास तीन दोखी एक मन अनाथ नाथ राख हो किरपाल रखाओ अनक जतन गमन करो खड़ कर्म जुत ध्यान करो उपाव सगल कर हारियो नह उठे बिकराल शरण बंदन करना पते पाव हरण हर हर हर हर एक तू ही दीन दयाल प्रभ चरण नानक आस।

सत संग मिलावो तुम देवो अपनो नाओ रहाओ। करो सेवा सतपुरख प्यारे जत सुनिए तत मन रह साओ। वारी फेरी सदा कुमाई कमन अनूप ते उठाओ। सरपद पाले सगल समाले सगलिया तेरी छाओ। नानक के प्रापुरख विधाते

पाया। जैसे खूंद कुमारी काम क्रोध तृष्णा के लीने, गतनी एक के जानी फूटी आँखें कछु ना सूझे।

रूप रंग रहस नहीं साचा, क्यों छोड़े जम जालो, पानी हर जापो जन्म गयो, साच शब्द बेन कहो ना छूड़स, बिरता जन्म पयो रखाओ, तन में काम क्रोध हो ममता, कठिन पीर अद फारी, गुरमुख राम जपो रस रसना, एन बेद तार तू तारी, बहरे करण अकल पई होची, शब्द सहज नहीं बूझया, जन्म पदार्थ मनमुख हारिया, बिन गुर अंध ना सूझया, रहे उदास आस निरासा, सहज ध्यान बैरागी, परमत नानक गुरमुख छूड़स, राम नाम लेवल।

त्यो लोए, कालजुग में हर जियो एक होर रुत न काई, नानक गुरम खिरदे आराम नाम लिहो जमाई। पहरो महला तीजा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद, दुबदा मनमुख रोग वे आपे तिसना जले अदकाई।

मुन केते बिन शब्दे सुरत न पाई, त्रै गुण सबे रोग वे आपे ममता सुरत गवाई। एक आपे काड लए प्रभ आपे गुरसेवा प्रभ लाए, हर का नाम निधानु पाया सुख वसिया मन आए। चौथी पदवी गुरमुख वर्त है तेन निरकर वासा पाया, पूरे सदगुर कृपा कीनी विचों आप गवाया। एक की सिरकार एक जिन ब्रह्मा बिशन रुद्र उपाया, नानक नेचल साचा एक ना ओ मरे न जाया। पैरो मोहल्ला तीजा मानमुख दुबदा सदा है रोगी, रोगी सगल संसारा गुरमुख बूझे रोग गवावे। गुर शब्दी विचारा हर जियो ससंगत मेलाए, नांग किसनों दे वडियाई।

से पूरे वड़भागी सतगुर सेवा लाए। जो इच्छै सोई फल पावै, गुरबाणी सुख पाए। भैरो महला तीजा, दुख जमे दुख मरे, दुख जकार कमाए। गर्भ जोनी विच कदे ना निकलै, बिस्ता महे समाए। त्रिग त्रिग मनमुख जन्म।

बिन अमरे कैसे राज मंडत, बिन बूझे कहां मन ठहराना, ना बिना सब जग बौराना, बिन बैराग कहां बैरागी, बिन हो त्याग कहां को त्यागी, बिन बस पंच कहां मन चूरे, ना बिना साध सड़गी चूरे, बिन गुर दीख्या कैसे ज्ञान, बिन पेखे को कैसो ध्यान,

बंद रह रती ना पावे, बिन सदगुर रोग तथे ना जावे। पार ब्रह्म जिस की नींद आया, बां पकड़ रोगों कड़ लाया। टूटे बंधन सा संग पाया, कहो नानक गुर रोग मिटाया। भैरो महला पंजवा, चीत आवे ता महा आनंद, चीत आवे ता सब दुख पंज, चीत आवे ता सरदा पूरी, चीत आवे ता कभे न चूरी। अंतर राम राय।

सदने प्रंता कीत आवे तां सब रंग माणे, कीत आवे तां चूकी काणे, ईद आवे तां सहज कर पाया, ईद आवे तां सुन समाया, ईद आवे सद कीर्तन करता, मन मानिया नानक भगवंता, भैरों महला पंजवां, बाप हमारा सद चरंग जीवी, पाई हमारे सद ही जीवी, मीत हमारे सदा अविनाशी, कुटुंब हमारा निकरवासी, हम सुख पाया तां सभे सुहेले, गुर पूरे पिता संग मेले, अरहाओ मंदर मेरे सबते ऊचे, देश मेरे बेअंत अपूछे, राज हमारा सदगी नेचल, माल हमारा अखूट अबेचल, तोबा मेरी सब जुग अंतर, बाज हमारी थान सरंतर, कीर्त हमरी कर कर होई, भगत हमारी सब नी लोई, पिता हमारे प्रगटे माज, पिता पूत रल की नी सांझ, कहो नानक जो पिता पतीने, पिता पूत एके रंग लीने, भैरों महला पंजवा, निर्वैर पुरख सतगुर प्रदाते, हम अपराधी तुम बख्शाते, जिस पापी को मिले ना ढोई, शरण आवे ता निर्मल होई, सुख पाया

नाम हमारे सगल आचार, नाम हमारे निर्मल व्यवहार, जाक मन वसिया प्रभ एक, सगल जना की हर हर टेक, मन तन नानक हर गुण गाओ, साध संग जे दे वै नाओ, भैरो महला पंजवा, निरतन कहो तुम देवो तना, अनक पाव जाहे निर्मल मना, सगल मनोरथ पूर्ण काम, भगत अपने को देवो नाम, सफल सेवा गोपाल राय, करन करामन गार स्वामी।

मान मूड मुग्ध हुए चतर सो ज्ञान सगल भयान का पौ नसे जन अपने कह हर मन बसे पार ब्रह्म प्रसुख निदान तत ज्ञान हर अमृत नाम हर कृपा संत टहले लाए नानक साधु संग समाए भैरो मोहल्ला पंजवा संत मंडल में हर मन वसे संत मंडल में दुर्ध सब नसे संत मंडल में निर्मल रीत संत संग हुए एक परीत संत मंडल तहा का नाओ पार ब्रह्म केवल गुण गाओ रहाओ संत मंडल में जन्म मरण रहे संत मंडल में जम किशु ना कहे संत संग हुए निर्मल बाणी संत मंडल में नाम खाणी संत मंडल का निचल आसन संत मंडल में पाप विनाशन संत मंडल में निर्मल कथा संत संग हो में दुख नसा संत मंडल का नहीं विनाश संत मंडल में हर गुणतास संत मंडल ठाकुर बिसरा।

ताल पर हरे सदा सखाई हर हर नाम। जे चीत आवे ते सदा सुख होवे, निकट न आवे ताके जाम रखाओ। जब इहो न सो तब किने उपाया, कवन मूल ते क्या प्रगटाया। आपे मार आप जीवाले, अपने भगत को सदा।

नृत्य नाट्य सुख नाई बहु देश कमाए सर्व सुखा हर हर गुण गाए सुख सहज आनंद लहो सा संग पागे वड़पागी गुरमुख हर हर नाम कहो रहाओ। बंधन माल पिता सुध बनता बंधन कर्म तरम हो करता बंधन काटनहार मन वस तौ सो पावे निज कर बस सब जाजक प्रादे मनगार गुण निदान बेंत अपार जिसनु कर्म करे प्रव्यापना हर घर नाम तिने जन जपना गुर अपने आगे अरदास कर कृपा पुरख गुणतास कौ नानक तुमरी शरणाई ज्यों पावे त्यों रखो गुसाई। भैरो महला पंजवा गुरमुख त्यागो दूजा पाओ गुरमुख जप्यो हर का नाओ बिसरी चिंत नाम रंग लागा जन्म जन्म का सोया जागा कर कृपा अपनी सेवा लाए साधु संग सर्व सुख पाए हरहाओ। रोग दोख गुर शब्द निवारे नाम औषध मन पीतर सारे गुर पेड़त मन पया आनंद सर्वन दान नाम भगवंत जन्म मरण की मिटी जमत्रास साध संगत हूंद कवन विगास गुण गावत निचल विश्राम पूर्ण होए सगले काम दुलभ दे आई परवान सफल होई जप हर हर नाम कहो नानक प्रभु कृपा करी सास ग्रास जपो हर हरी। भैरो महला पनवा तब ते ऊंचा जा का नाओ सदा सदा ताके गुण गाओ जे सिमरत सगला दुख जाए सर्व सुख बसे मन आए सिमर मना तू साचा सोए हलत पलत तुमरी गत होए रहाओ। पुरख निरंजन सिरजनहार जी जंत देवे आहार कोट खते खिन बख्शनहार भगत पाए सदा निस्तार साचा तन साची वड्याई

निर्विघ्न भगत पज हर हर नाओ, रसक रसक हर के गुण गाओ हरहाओ, हर सिमरत किस चाख ना जोह, हर सिमरत दायत जो ना पोह, हर सिमरत मोह मान ना बधे, हर सिमरत गर्भ जो ना रुद्ध, हर सिमरन की सगली बेला, हर सिमरन बहु माई अकेला, जात जात जपे जन कोए, जो जापे तिसकी गद होए, हर का नाम जपिगे सा

पर ब्रह्म का निवास, तिद गुर कौ सद करी नमस्कार, तिद गुर कौ सद जाओ बलिहार, सदगुर के चरण तोय तोय पीवा, गुर नानक जप जप स जीवा।

भगत करो जन शरण तुम्हारी, नाओ विर माया नाओ मेरे पूंजी, तुम्हें छोड़ जानो नहीं दूजी, नाओ मेरे बंत पनाओ।

आए। ऐसा ज्ञान विचार मना हर की ना सिमरो दुख पंजना। अरहाओ जब लग सिंह रहे बन माहे तब लग बन फूले ही नाहे। जब ही

राख रह माना सब कोई चलन कहत है ऊहा ना जानू बैकुंठ है कहां अरहाओ आप आपका मर मन जाना बातन ही बैकुंठ बखाना जब लग मन बैकुंठ की आस तब लग ना ही चरण।

अर्ध उर्ध मुगला गोकास तुंड मंडल में कर परगास ऊगा सूरज नाही चंद आद निरंजन करे आनंद सो ब्रह्मंड पिंड सुजान मान सरोवर कर स्नान सो हं

असंख कोट अन पूजा करी एक न पूस नामे हरी परमे नाम दियो इहो करना अंत रूप तेरे नारायण पर धन पर दारा पर हरी ताके निट बसे नर हरी

परमत नाम दियो नाटे बिना ना सोहे बत्तीस लखना दूध कटोरे गडवे पानी कपल गाय नामे दुई आनी दूध पियो गोविंद राए दूध पियो मेरो मन पति आए नहीं ता कर को बाप रसाए रहाओ सोयन कटोरी अमृत भरी लै नामे घर आगे तरी एक भगत मेरे हिरदे बसे नामे देख नारायण हस्ते दूध पियाए भगत कर गया नामे घर का दर्शन पया मैं बौरी मेरा

भगत जिना को देवरा फिरे, भैरों नाम देव जियो कर दूजा एक ओंकार, सदगुर प्रसाद जैसी भूखे प्रीत अनाज, त्रिखा बंद जल सेती काज, जैसी मूड़।

और ठानी दुट सवा मेल मंत्र उपाया करसे औध कनेरी गिर तार जाल ज्वाला पै राख्यो राजा राम माया फेरी काड खड़ग काल पै कोप्यो मुए बताओ जो तुहे राख पीत पीतांबर तिरपावन तनी थंब माए हर पाखे हरनाग सजन नखे बदारियो।

पाल गंग जमन जो उल्टी बह तो नामा अगर करता रहे साल कड़ी जा बीती सुनी अजो न आयो तिर पवन तनी पाखंतन बाज बजाएला गरड़ चढ़े गोविंद आएला आपने।

साखा हरी धर्म फूल फल ज्ञान पद प्राप्त शाप कणी चूका मन अभिमान अखी कुदरत कन्नी बाणी मुख अखण सच।

आपा पढ़िए पंडित करो विचारो स्वामी पंडता तुम देहो मती किन विद पावो प्राण पति रघाओ पीतर अगन वनस्पत मौली सागर पंडय पाया चंद सूरज दो कर ही पीतर ऐसा ज्ञान न पाया राम रवंता जानिए एक माई भोग करे ताके लखन जानिए खिमा तन संग्रेह कया सुने ना खाया मन है तेना ही सेती वासा परुणत नानक दासन दासा खिन तोला खिन मासा बसंत हिंडोल महला पहला साचा साओ गुरु सुख दाता।

पद खोए साचा सेवो साची बाणी नानक नामे साच सुवाणी बसंत महला तीजा बिन करमा त परम भुलाई माया मोहे बहुत दुख पाई मानव अंधे ठौर न पाई बिष्टा का कीड़ा बिष्टा माए सुमाई हुकम मन्ने सु जन परवान गुर के शब्द नाम निशान अरहाओ साजरते जिना तुर लिख पाया हर का नाम सदा मन पाया सतगुर की बाण।

गुर सब्दी हर चेत सुपाए, राम नाम रस रहे अघाए, कोड़ कुटंत्र के पाप जल जाहे, जीव तुमरे हर नाम समाहे, हर की दात हर जीव जाने, गुर के शब्द इहो मन मोलिया, हर गुण दाता नाम खाने रहाओ, भगवे वेस प्रम मुक्त न होए, बहु संजम संत न पावे कोए, गुरमत नाम प्राप्त होए, वडभागी हर पावे सोए, काल में राम नाम वडियाई, गुर पूरे ते पाया जाई, नाम रते सदा सुख पाई, बिन नामे होमे जल जाई।

अरहाओ गुर प्रसाद लागे नाम स्वाद, काहे जन्म गवाब हो वैरवाद, गुर कृपा कीनी चूका अवमान। सहज पाए पाया हर नाम, उत्तम ऊंचा शब्द काम, नानक वखाणे साच नाम, बसंत महला तीजा। बनसत मौली चढ़िया बसंत, यो मन मौल्या सतगुरु संग, तुम साच त्यावो मुद मना, ता सुख पावो मेरे मना। अरहाओ एत मन मौल्य पया आनंद, अमृत फल पाया नाम गोविंद, एको एक तब आख बखाणे, हुक्मे बूझे ता।

आमना वरतन कोठड़ी गढ़ मंदिर एक लुकानी सब गुरु मेरे ता खोजिए मेरे ज्योति ज्योत सुबानी माधो साधु जन देव मिलाए देखत दर्श पाप सब नसे पवित्र परम पद पाए रहाओ पंच चोर मेरे लागे नगरिया राम नाम तन हिरिया गुरमत खोज परे तपकरे तन साबत रास उबरिया पाखंड परम उपाप कर थाके अंतर माया माया साधु पुरख पुरख पद पाया अज्ञान अंधेर गवाया जगन्नाथ जगदीश गुसाई कर कृपा साध मिलावे नानक सांत होवे मन अंतर नित हिरदे हर गुण गावे बसंत महला चौथा हिंडोल तुम वड़ पुरख वड़ अगम गुसाई हम कीरे किरम तुमन से हर दीन दयाल करो प्रभु कृपा गुर सदगुर चरण हम बनछे गोबिंद जियो सद संगत मेल कर कृपशे जन्म जन्म के किल बिकमल भरिया मिल संगत कर प्रभ हंस।

तेरा दिया सब जंत खाहे अंतरजामी प्रभ दयाल अपने दास को नदर निहाल कर कृपा मुझ देहु दान जब जीवे नानक तेरो नाम बसंत मगल्ला पंजवा आराम रंग सब गए पाप राम जबत कछ नहीं संताप गोविंद जबत सब मिटे अंधेर हार सिमरत कछ नाहे फेर बसंत हमारे राम रंग संत जना सो सदा संग रहाओ संत जने किया उपदेश जय गोविंद भगत सो तन देश हर भगत हीन उद्यान थान गुर प्रसाद खड़

जन को पहुंच ना सकस कोए प्रवदास रखे कर जतन आप अखंड पूर्ण या को प्रताप गुण गोविंद ने दर्शन गाए नारक जीवे हर चरण ते आए बसंत महला पंजवां।

ना पण सज दोत सवार प्रयो सेवो प्रप्रेम आधार गुर शब्दी बिगत्यास निवार मोहन मोह लिया मन मोहे गुर के शब्द पछाना तोहे नानक ठाडे चाह है प्रभु द्वार तेरे नाम संतोखे कृपा तार बसंत महला पहला मन पुल्लो परमस आए जाए अतलुब्ध लुबानो बिखमाए न अस्थिर दिसे एक पाए जो मीन कुंडलिया कंठ पाए मन पुल्लो समझस साच नाए गुर शब्द विचारे सहज पाए रहाओ मन पुल्लो परमस पावरतार बिल बिरथे चाहे बहु विकार मैग जो फासस कामहार कड़बंधन बाध्यो शीश मार मन मुग्धो दादर भगतहीन दर पलट सरापी नाम बीन ताके जात न पाती नाम लीन सब दुख सुखाई गुणे बीन मन चले न जाई ठाक राख बिन हरस राखे पत न साख तू आपे सुरता आप राख हर तारण देखे जाने आप आप पुराए किस कहो जाए गुर मिले बिरथा कहो माए अब गुण छोड़ो गुण कमाए गुर शब्दी राता सच समाए सदगुर मिले मत उत्तम होए मन निर्मल हो मैं कड्डे तोए सदा मुक्त बंधना सके कोए सदा नाम खाने और न कोए मन हर के भाणे आवे जाए सब में एको केश पहन न जाए सबको वर्त हुक्म सुमाए दू सू सब तिसर जाए तू अपुल ना पुलो कदे नाहे गुर शब्द सुनाए मत अगाहे तू मोटो ठाकुर शब्द माहे मन नानक मानिया सच सलाहे बसंत महला पहला दर्शन की प्यास जिस न रहोए एक तराचे पर घर दोए दूर दर्द मद अमृत खाए गुरमुख बूझे एक समाए।

निर्मल नाव घर में घर जो देख दिखावे गुरमैली सो मैल बुलावे मन में मनुआ चित में चीता ऐसे घर के लोग अतीता हर सोगते रहे निराशा अमृत चाख हर नाम निवासा आप शान रहे लिवलागा जन्म जीत गुरमत दुख भागा।

खुल्यो कर्म पयो पर गासा काट काट हर घर डीठा रखाओ पार ब्रह्म आजोनी संपो सर्व थान कट डीठा पयो प्राप्त अमृत नामा बाल बाल प्राव चरणीठा सत संगत की रेण मुख लागी की ये सगल तीर्थ मजनीठा कहो नानक रंग चलूल पय है हर रंग न लय मजीठा सारग महला पंजवा हर घर नाम दियो गुरसाथे निमुख बचन प्रेही रे बस्यो सगल भूख मेरी लाथे रगाओ किरपा निदान गुण नायक ठाकुर सुभ समूह सब नाथे एक आस मोय तेरी स्वामी और द्वितीय आस बेराथे नैन त्रिप तसे दिग दर्शावा गुर कर तारे मेरे माथे कहो नारक मैं अतुल सुख पाया जन्म मरण पै लाते सारग महला पंजवा अरे मूड़े आन कहे कत जाई संग मनोहर अमृत है रे भूल भूल बिख खाई रगाओ प्रभ सुंदर चतर अनूप विधाते

प्रभ मेरो एक पुत्र सदा सहाई, मनमोर मेरे जी को प्यारो, कमल कहां गुण गाई रहाओ, खेल खिलाए लाड लाडावे, सदा सदा अनदाई, प्रद पाले बार्ग की न्याई, जैसे मात पिताई, तिस बिन निमख नहीं रह सकिए, बिसर न कब हो जाई, कहो नानक मेल संत संगत ते, मगन पै लिवलाई, सार्ग महला पंजवा, अपना मीत स्वामी गाइये, आस न अवर कहू की कीजे, सुखदाता प्रत्याये रखाओ, सुख मंगल कल्याण जिसे कार, तिस की सरणी पाइये, तिसे त्याग

जब भूखो तब भोजन मांगे हकाए सुख किनारे तब अरोग जब तुम संग बस्तो छुटक दुहे रवारे कवन बसेरो दा दासन को

काहू काहू अपनो ही चित आवे, जो काहू को चेरो होवत ठाकुर ही पै जावे रगाव। अपने पै दुख, अपने पै सुख, अपने ही पै बिरत, अपने पै मान, अपने पै ताना, अपने ही पै अर्था। किन ही राज जोबन तन मिलख, किन ही बाप मै तारी, सर्व थोक नानक गुर पाए पूर्ण आस हमारी। सार्ग मोहल्ला पंजवा। झूठो माया को मदमान, त्रो मोह दूर कर बपरे, संग उपाले जान रगाओ, मिथ्या राज जोबन अर उमरे। मीर मलक अर खान, मिथ्या कापर सुगंध तराई।

चोरी, अंध कूप मैं पतत होत जग, संतो करो परम गत मोरी, साध संगत नानक पयो मुक्ता, दर्शन पेखत पोरी।

और गाव जाके सूद परोए जनता किस प्रभु का जस गाव हो। सिमर ठाकुर जिन सब कुछ दीना आन कहां पे जाओ, सबल सेवा स्वामी मेरे की मन बा

दुख नाठे सुख सहज समाए, आनंद आनंद गुण गाया, बां पगर कढ़ लीने अपने, गृह अंध कूप ते माया। कहो नानक गुर बंधन काटे, बिशरत आन मिला।

समझ अचेत चेत मन मेरे कथी संतन अकथ कहानी लाभ लहो हर दे आराधो छुटके आमन जानी।

छोड़ो कपट होए निर्वैरा तो प्रसंग निहारे सातन वंजो सातन संचो कबू न आवो हारे खात खर्चत किश निखुटत नाही।

प्रव सेव करत अन सेवा बिरथा काटे काल। जा जम आए संघारे प्राणी तब तुमरो कौन होवाल। राख ले हो दास अपने कहो सदा सदा कृपाल। सुख निदान नान प्रा मेरा साध संग तन माल। सार्ग महला पंजवा मन तन राम को व्यवहार। प्रेम भगत गुण गावत गीदे होत नहे संसार रगाओ। श्रवणी कीर्तन सिमरन स्वामी

मन तन धन तो तुमरा स्वामी आन न दूजी जाए। जो तू रखे तिवखी रहना तुमरा पहने खाए, साध संगत के बल बल जाई।

शरीर सब हुट्यो, सास गयो तत घाट रहाओ, अनास रियान उधरले पुखे माया गईया हाट। तिल भग करत करत पछतावे, कभू न साके शांत, निंदक जमदूती आए संघारियो, देवे मूंड ऊपर मटाक। नानक आपन कटारी आपस को लाई, मन अपना कीनू फाट। सारग मोहल्ला पंजवा टूटी, निंदक की अद बीच। जनका राखा आप स्वामी, बेमुख को आए पहुंची मीच। रहाओ उसका कहया कोई न सुनई, कई

काम क्रोध निंदा पर हरिये काढ़े साधु के संगमार। जन्म पदार्थ गुरमुख जीतया बौर न जुए हार। आठ पैर प्रभु के गुण गावे

गोविंद पूर्ण ब्रह्म ज्ञान रखाओ। साधक सिद्ध सगल मुन लोचे बिरले लागे ध्यान, जिसे कृपाल होए मेरा स्वामी पूर्णता को काम। जा किरदे वसे पए भंजन, ते जाने सगल जगान। खेन पल बिसर नहीं मेरे करते, तो नानक मांगे दान। सार्ग महला पंजवा, बूठा सर्वथा ही में हो। अनंद मंगल गाओ हर जस, पूर्ण प्रट्यो ने हो रहाओ। चार कुंट दह दिस जल निध, ऊन थाओ ना के हो। कृपा निध गोविंद पूर्ण, जी दान सब देहो। सत सत हर सत स्वामी, सत सा संगे हो। सत तेजन जिन प्रतीत उपजी, नानक नह परमे हो। सार्ग महला पंजवा, गोविंद जियो तू मेरे प्राण आधार। ताजन मीत सहार।

मोह मद मातो सिमरत ना गए हरे रगाओ साध संग जपते नारायण तिनके दुख जरे सबल दे तन ओए जन्मे प्रभ के संग रले चार पदार्थ अष्ट दिशा सिद्ध।

तू बेअंत पार ब्रह्म स्वामी पर तेरी जाए न लाखी। चरण कमल प्रीत मन बेदया कर सर्वस अंतर राखी। वेद पुराण सिमरत साधु जान ए बाणी रसना पाखी। जप राम नाम।

परा पूर्व जिसे लिखया बिरला पाए कोए, रावण गो गोपाल करते नानका सजोए। सारग मोहल्ला पंजवा, हर के नाम की मत सार, हर विसार जो आन रचे मितन सब स्थार रगाओ। साध संगम बज स्वामी पाप होवत खार, चरनार बिन बसाए हृदय

राखे एकत कोय न किस जी संग। धड़कड़ कथा राजन की चल है कर कर तुझे उमाहा। जी जंस पाछे करया प्रथम रिजक समाहा। जो कुछ करना तू आपे करना मसलत काहू दीनी। आनक जिदन का करे दिखाए साची साखी चीनी। हार भगतां का राखे अपनी दीनी नाम डाई। जिन जिन करी अवग्या जन की ते तै दिए रुड़ाई। मुक्त पए सा संगत कर तिनके अवगुण सब परखरिया। तिनको देख पए किरपाला तिन पवसागर तरिया। हम नाने नीच तुम्हें बड़ साहेब कुदरत कौन बिचारा। मन तन शीतल गुर दर्श देखे नानक नाम आधारा। सारग महला पंजवा अष्टपदी कर सेवा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद आगम अगाध सुनो जन कथा। पार ब्रह्म की अचरज सभा रखाओ सदा सदा सतगुर नमस्कार। गुर कृपा ते गुण गाए अपार मन पीतर होवे परगास। ज्ञान अंजन अज्ञान विनाश मित नाही जाका विस्तार। तो बाता की अपर अपार अनक रंग जाके गने ना जागे। सोग हरख दोहु मैं नागे अनक ब्रह्मे जाके वेद तुन करे। अनक महेश बैस ध्यान करे अनक पुरख अंसा अवतार।

अनक सूर ससियर नखियात, अनक देवी देवा बोपात, अनक बसदा अनक काम तेन, अनक पार जात अनक मुखबेन, अनक आकाश अनक पाताल, अनक मुखी जपिये गोपाल, अनक शास्त्र सिमरत पुराण, अनक जुगत होत बखियान, अनक स्रोते सुने निधान, सर्व जी पूर्ण भगवान, अनक धर्म अनक कुमेर, अनक वर्ण अनक कनक सुमेर, अनक शेख नवतन नाम लेहे, पार ब्रह्म का अंत न देहे, अनक पुरिया अनक तैखंड, अनक रूप रंग ब्रह्मांड, अनक बना अनक फल मूल, आपे सूक्ष्म आपे अस्थूल, अनक जुगाद जिनस अररात, अनक परलो अनक उत्पात, अनक जी जाके ग्रे माहे, रमत राम पूर्ण सर्व ठाए, अनक माया जाकी लगी न जाए, अनक कला खेले हर राय, अनक तोनत ललत संगीत, अनक गुप्त प्रगटे तय चीत, भक्त ऊच भक्त जाके संग, आड़ पैर गुण गावे रंग, अनक अनाहद अनंत चुनकार, ओवा रस का कश अंत न पार, सत पुरख सत स्थान, ऊच ते ऊच निर्मल निर्वाण, अपना किया जाने आप, आपे कट कट रहो व्याप, कृपा निधान

देव संदेशा, देव संदेशा प्रभु जो कैसा, कह मोहन परवेशा, अंग अंग सुखदाई पूर्ण ब्रह्माई, थान थनंतर देशा, बंधन ते मुक्ता कड़कड़ जुगता, कै ना सकोहर जैसा, देख चरित नानक मन मोहयो,

का जत होए ब्राह्मण चुली संतोख की गिरही का सतदान राजे चुली न्याव की पढ़िया सच ध्यान पानी चेतना तो पई मुख पीते तिख जाए पानी पिता जगत का फिर पानी सब खाए पौड़ी नाए सुने सब सिद्ध है रिद पिछे आवे नाए सुने नौनद मिले मन चिंदिया पावे नाए सुने संतोख होए कवला चरण त्यावे नाए सुने सहज उपजे सहजे सुख पावे गुरमति नाओ पाईए नानक गुण गावे श्लोक महला पहला दुख ज जमन दुख मरण दुख वर्तन संसार दुख दुख अगे आखिए पढ़ पढ़ करे पुकार दुखियां पंडा खुलियां सुख ना निकले हो कोए दुख जियो जलाया दुखिया चलिया रोए नानक सिवती रत्या मन तन हरिया होए दुख की अग्गी मारिए पी दुख दारू होए महला पहला नानक दुनिया पस रंग पशु हु पस खेहे पसो पस कमावनी पी पस परिये देह जा जियो विच्चों कड़िये पशु परे आ जाए अगे लेखा मंगे होर दसूनी पाए पौड़ी नाए सुने सुज संजम जम नेड़ न आवे नाए सुने कड़ चानना आरेर गुवावे नाए सुने आप बुझिए लाहा नाओ पावे नाए सुने पाप कटिए निर्मल सच पावे नानक नाए सुने मुख उजले नाओ गुरमुख त्यावे श्लोक महला पहला कर नारायण सभा नाल

नरक सुर्ग अवतार उत्तम मध्यम जाति जैसी परम पवे संसार अमृत बाणी तत्व खाणी ज्ञान ध्यान विच आई गुरमुख आखी गुरमुख जाति सुरती कर्म त्याई हुक्म साज।

फिर हुए ना बिनासा, हर से तीरंग रव रहे सब सास गिरासा, हर का रंग कभी ना उतरे गुरमुख पर गासा, ओए कृपा करके मेलियन नानक हर पासा। श्लोक महला तीजा, जिच ओ मन लहरी विच है होम में बहुत अंकार, शब्दे साधन आवई नाम न लगे प्यार, सेवा थाए न पवी तिसकी खब खब होए खुवार, नानक सेवक सोई आखिए जो सिर तरे उतार, सतगुर का पाणा मान ले शब्द रखे उतार। महला तीजा, सो जापो तब सेवा चाकरी जो खसम पावे, आपे बगसे मेल लय आपत गवावे, मिलिया कदेरा विछड़े ज्योति ज्योत मिलावे, नानक गुर प्रसादी सो बुझसी जिस आप बुझावे। पौड़ी, सब को लेखे विच है मनमुख अहंकारी, हर नाम कदे ना चेतई जमकाल सिर मारी,

लोभ लहर सुध मत गई, सच न लगे प्यार, गुरमुख जिना शब्द मन वसै दर गए मोख द्वार। नानक आपे मेल लय, आपे बख्शन हार, महला चौथा, नानक जिस बिन घड़ी ना जीवना, विसरे सरय ना बिंद, तिस ज्यों क्यों मन रूसी है, जिस हमारी चिंद, महला चौथा, सावन आया चिमचिमा, हर गुरमुख नाम ते आए, दुख पुख काड़ा सब चुकाए सी, मी होम उठा शैबर लाए, सब तरत पई हरियावली, आन जम्या बोह

कहां नार गर्भस थोरी बात, मंद नाज टका चार गांठी, आइडो टेडो जात रखाओ, बहुत प्रताप गांव सो पाए, दो लख टका बरात, दिस चार की करो साहिबी, जैसे बनघर पात, ना को ले आयो यो तन, ना को ले जात, रावण हूं ते अलक शत्र पा, हर के संत सदा सिर पूजो, जो हर नाम जपात, जिन को कृपा करत है गोविंद, ते सत्संग मिलात, मात पिता बंता सुत संपत, अंत न चलत संगात, कहत कबीर आराम पज बौरे, जन्म अकार्थ जात, राजाश्रम मित नहीं।

माया कारण श्रम अत करे सो माया ले गाडे तरे आत संचय समझे नहीं मूड तान तरती तन होए गयो तूड़ काम क्रोध तृष्णा अत जरे साध संगत कबहू नहीं करे कहत नाम जो ताची आन निरपय होए पजिए भगवान बदो की ना हो माधो मोस्यों ठाकुर ते जान जानते ठाकुर खेल परयो है तो स्यों रहाओ आपन देव देवरा आपन आप लगावे पूजा जल ते तरंग तरंग ते है जाल कहन सुन को दूजा आपे गावे आपे नाचे आप बजावे तूरा कहत नाम देव तू मेरो ठाकुर जन ऊरा तू पूरा दास अनिम मेरो निज रूप दर्शन निमख ताप त्रिमोचन परसत मुक्त करत ग्रे कूप रहाओ मेरी बंदी भगत छिड़ावे बंदे भगत न छूटे मोहे एक समय मोको गए बंद तौफ मैं पो जवाब न होए मैं

जियां अंदर जियो तुही, गुरमुख त्यावे से अमृत पावे, से ही सूचे हो ही। आहिरस नाम जपोरे प्राणी, मैले खच्चे हो ही। जेही रुत काया सुख तेह, तेहो जेही देही। नानक रुत सुहावी साई, बिरनावे रुत केही। मलार महला पहला, करो

जिस में नाम निरंजन अंश दुख रोग सब गया गवाए नानक छूटस साचै नाय। मलार महला पहला दुख मोहरा मारन हर नाम सिला संतोख पीसन हथदान नित नित लेहो

मन की बिद सतगुर ते जाने अनदन लागे साधे गर्स्यों ध्यान गुर शब्द रते सदा बैरागी।

गुरमुख राम नाम मन पीजे हर सेती लिवलाई रहाओ। मेरा प्रभ आत अगम अगोचर गुरमत दे बुझाई, सच संयम करनी घर कीर्त हर सेती लिवलाई। आपे शब्द तज साखी आपे जिन ज्योति ज्योत मिलाई, देही काची पौन मजाए गुरमुख अमृत पाई। आपे साजे सबका रे लाए सो सच रहा समाई, नानक ना बिना कोई किश नाही नामे दे वडाई। मलार मोहला तीजा हौमे बिख मन मोया लद्या अजगर पारी, गारड़ शब्द मुख पाया हौमे बिख घर मारी। मन रे हौमे मोह दुख पारी,

पाए, यो विछोड़ा सहया ना जाए। सतगुर मिले ता मिले सो पाए, नामहीन बिन से दुख पाए। तृष्णा जलिया भूख न जाए, बिन भागा नाम न पाया जाए। बहुवद थाका कर्म कमाए, त्रै गुण बाणी वेद विचार। बिख्या मैर बिख्या वापार, मार जन्मे फिर होए खुवार। गुरमुख तुरिया गुण उर तार, गुर माने माने सब कोए। गुर बचनी मन शीतल होए, चौ जुग सोभा निर्मल जन सोए। नानक गुरमुख विरला कोए, राग मलार महला चौथा। कार पहला चौपदे एक ओंकार।

सगुर देख मेरा मन बिकस्यो जन घर पेट्यो बनवारी जगाओ जिन ऐसा नाम सारिया मेरा हर घर तिसके कुल लागी गारी हर तिसके कुल प्रसूत न करियो तिस विधवा कर्म है तारी हर घर आन मिलावो गुर साधु जिस अहिंस हर उर तारी गुर डिठे गुर का सिख बिकसै जो बारक देख महतारी तान पिरका एक ही संगवासा पिज होमे पीत करारी गुर पूरे होमे

खाओ। अनक प्रकार भोजन बहु किए, बहु व्यंजन मिसटाए। करी पाक साल सोच पवित्रा, हुण लाभ हो पूघर राय। दुष्ट बिदारे साजन रहसे, ए मंदर कर अपनाए। जौ ग्रे लाल रंगी यो आया, तौ में सब सुख पाए। संत सभा ओट गुर पूरे, पुरमस्तक लेख लिखाए। जन नानक कंत रंगीला पाया, फिर दुख न लागे आए। मलार मोहल्ला पंजवां, खीर धार बारक जब होता, बिन खीरे रहन न जाई। सार संभाल माता मुख नीरे, तब ओ तृप्त अघाई। हम बारक पिता प्रवदाता, फूले बारक अनक लख बरिया। अनठौर नाही जय जाता रहाओ, चंचल मत बारक बपरे की। सर्प अगन कर मिले, माता पिता कंठ लाए राखे। आनंद सहज तब खिले।

मन बांछे सो लैसी। पिता कृपाल आग्या ए दीनी, बारक मुख मांगे सो देना। नानक बारक दर्श प्रवचा है, मोहे हिरदे बसे नित चरना। मलार महला पंजवा, सगल विधि जोर आहार करे तजो सगल अंदेसा। कार्ज सगल अरंभ्यो करका, ठाकुर का पहारूसा। सुनिए बाजे बाज सुहावी, पोर पया मैं प्रेम पेखे। गृह मंगल सोहलावी, अराव मनुआ लाए सवारे थाना। पूछो संता जाए, खोजत खोजत मैं पाहुन मिलियो। भगत करो निम पाए, जप आए बसे गृह आसन। तब हम मंगल गाया, मीत साजन मेरे पय सुहेले। प्रभ पूरा गुरु मिलाया, सखी सहेली पय आनंदा। गुर कार्ज हमरे पूरे, कहो नानक वर मिलिया सुखदाता। छोड़ न जाई दूरे, मलार महला पंजवा। राज ते कीट, कीट ते सुरपत। कर दोख जठर को परते, कृपा निज छोड़ आन को पूजे। आत्म काती हरते, हर बिसरत ते दुख दुख मरते। अनक बार प्रमे बो जोनी,

हम एक किरत बिन रह ना सको, प्रीत हमारी लागी रहाओ। कौन कै संग मुए प्रवचित आवे, संत प्रसाद मुए जागी। तुन उपदेश पए मन निर्मल, गुण गाए रंग रंगी। यो मन देखिए संत मीता, किरपाल पए बड़भागी। महा सो पाया बन ना साको, रेन नानक जन पागी। मलार महला पंजवां, माई मोहे प्रीतम देहो मिलाई। सगल सहेली सुख पर सूती,

राजा राम रमत सुख पायो, बरस मेघ सुखदाई रहाओ। एक पाल बिसरत नहीं सुख सागर, नाम नवे निद पाई। उदाउद पयो पूर्ण भावी को, पेटे संत सहाई। सुख उपजे दुख सगल बिनासे, पार ब्रह्म लिवलाई। तरयो संसार कठिन पै सागर, हर नानक चरण तिहाई। मलार महला पंजवा, कानहार बरस सगल जग छाया। पए किरपाल प्रीतम प्रा मेरे, आनंद मंगल सुख पाया रखाओ। मिटे कलेस त्रिसन सा बूझी, पार ब्रह्मन त्याया। साध संग जन्म मरण वारे, बौर न कतहु ताया। मन तन नाम निरंजन रातो, चरण कमल लिवलाया। अंगीकार कियो प्रभु अपने, नानक दास शरणाया। मलार महला पंजवा, बिशरत क्यों जीवे ओए जीवन। चिते उलास आस।

सेवक पूर्ण भगत चेरानो रहाओ। ए त्योत डोल डोल शरम पायो, तान तान होत बेरानो। लोग दोराए करत ठगियाई, होतो संग न जानो। मृग पंखी मीन दीन नीच, ए संकट फिर आनो। कहो नानक पान प्रवतार हो, साध संगत सुख मानो। मलार महला पंजवां, दुष्ट मोए बिख।

पंजवां पड़ताल कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुर मनार प्रे दयार स्यो रंग किया।

होए आनंद सगल भाग रहाओ। संत संगे मन परफड़े मिल मेघ तर सुहाग। कान कोर प्रीत मोर इत चात्रक बूंद ओर। ऐसो हर संगे मन मोह त्याग माया तोहो।

आकाशी बिकसे सहज सुपाई। प्रीतमा प्रीत बने अब ऐसी ज्योति ज्योत मिलाई। यात्रक जल बिन प्रयो प्रयो टेरे बिल्ब करे बिललाई। कानहर कोर दसो दस बरस बिन जल प्यास न जाई। मीन निवास उपजे जल गीते सुख दुख पुरब कमाई। खेन तेल रह न सकै पल जर बिन मरण जीवन तिस ताई।

मन माही। गारड़ गुर ज्ञान ध्यान गुर बचनी, बिखिया गुरमत जारी। मन तन हेम पै सज पाया, हर की भगत निरारी।

मन रे सतगुर सेव समाए, वड़े पा गुर पूरा पाया, हर हर नाम त्याए रहाओ, हर अपने भाणे सृष्ट उपाई, हर आपे दे आधार, हर अपने भाणे मन निर्मल किया, हर स्यों लागा प्यार, हर के भाणे सतगुर पेटिया, सब जन्म सवारन हार, वाह वाह बाणी सत है गुरमुख बूझै कोए, वाह वाह कर प्रसाद आईए तेस जेवड़ अवर न कोए, आपे बगसे मेल लय कर्म प्राप्त होए, साचा साहेब मारो सतगुर दिया दिखाए, अमृत वरसै मन संतोखिए सच रहे लिवलाए, हर के नाए सदा हरियावली फिर सुके ना कुमलाए, बिन सतगुर किने ना पायो मन वेखो को पतियाए, हर कृपा ते सतगुर पाइए भेटे सहज सुपाए, मानमुख परम भुलाया बिन पागा हर तन ना पाए, त्रै गुण सबा तात है पढ़ पढ़ करे विचार, मुक्त कदे ना होवई न पाएन मोह द्वार, बिन सतगुर बंधन ना टुट ही नाम न लगे प्यार, पढ़ पढ़ पंडित मुनी थके वेदां का अभ्यास, हर नाम चित ना आवई न निज कर होवे वास, जमकाल सिरो ना उतर अंतर कपट विनाश, हर नावे नू सब को प्रताप दा विण भागा पाया ना जाए, नदर करे गुर फेटिए हर नाम से मन आए, नानक नामे ही पत उपज हर सोरहां समाए, मरार महला तीजा अष्टपदी कार दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर हर कृपा करे गुर की कारे लाए, दुख पल्लर हर नाम साए, साची गत साचे चित लाए, गुर की बाणी शब्द सुनाए, मन मेरे हर हर सेव निधान, गुर कृपा ते हर तन पाईए

हां पतत तुम तारे, पतत पावन भगत बच्छल, कृपा सिंध स्वामिया, संत संगे भजन संगे, रौ सदा अंतर जामिया, कोट जन्म परमंत जोनी, ते नाम सिमरत तारे, नानक दर्श प्यास वर जियो, आप लिओ सुमारे, हर चरण कमल मन लीना, प्रभ जल जन तेरे मीना, जल मीन प्रभ जियो एक तू है, पिन आन ना जानिए, गए पूजा लेवो नाम देवो, तौ प्रसादी मानिए, पज साध संगे एक करंगे, किरपाल गोविंद दीना, अनाथ नीच सरनाए नानक, करमया अपना कीना, आपस को आप मिलाया, भ्रम पंजन हराया, आचर्य स्वामी अंतर जामी, मिले गुणित प्यारिया, महामंगल सुह उपजे, गोविंद गुणित सारिया, मिल संग सोहे देख मोहे, पुरब लिखिया पाया, बिनवंत नानक सरण तिन की जिन

पूजा लाया, दस अवतारी राम राजा आया, दैता मारे ताए हुक्म सवाया, ईस महेश्वर सेव इनी अंत ना पाया, सच्ची कीमत पाए तख्त रचाया, दुनिया तंदे लाए आप छपाया, धर्म कराए कर्म तुरों फरमाया, श्लोक महला दूजा सावन आया हे सखी।

भक्ति शब्द सूर है काम क्रोध जिनी मारिया सच्चे अंदर महल शब्द सवारिया छे भगत तुद पाम दे सच्चे नाहे प्यारिया सतगुर सेवन अपना बिना विटो हो वारिया। सलोक महला तीजा ऊनव ऊनव आया वरसे लाए चढ़ी नानक पाने चले कंत कै तो माने सदा रली। महला तीजा क्या उठ उठ देखो बपड़े इस मेघे हथ किशनाहे जिन यो मेघ पठाया तिस राखो मन माहे तिस नू मन वसाए सी जाको नदर करे नानक नदरी बारी सब करण पला करे पौड़ी। तो हरसदा सरेवी है जे करतन लागे वार आडाणे आकाश कर खिन में टाए उसारण हार आपे जगतो पाए कै कुदरत करे विचार। मन अगे लेखा मंगिए बहुती होवे मार गुरमुख पासों लेखा निबड़े बगसे सिबत भंडार ओथे हथ ना अपड़े ऊक ना सुनिए पुकार ओथे सतगुर बेली होवे काढ ले अंती वार। इना जनता नू होर सेवा नहीं सतगुर सिर करता।

तो सृजी तुदय गोई लख चौरासी मेदनी तुद ही ते होई। एक राजे खान मलूक कहे कहावे कोई, एक सास दावे संच तान दूजे पद खोई। एक दाते एक मंगते सबना सिर सोई, विण नावे बाजारिया बीहावल होई। ऊड़न खुट्टे नानका सच करे सो होई। सलोक महला तीजा बाबिया गुणमंती मैल पाया अगुणमंती दूर। अंतर तेरे हर वसै गुरमुख सदा हजूर।

मसो जम्मे हम मस के पांडे ज्ञान त्यान का सूझे नाही चतर कहावे पांडे मास पुराणी मासक तेबी चो जुग मास कमाणा जर काज व्याए सुहावे उथे मास समाणा स्त्री पुरख निबजे मासों पातशाह सुल्ताना जे ओए दिसते नरक जांदे ता उनका दान न लेना देंदा नरक सुर्ग लेंदे देखो एहो तिंघाणा आप ना बूझे लोक बुझाए पांडे खरा सियाणा पांडे तू जाने ही नाही किथो मास उपन्ना तोयो अन्न कमाद कपाह तोयो तिरपवन गन्ना तोआ आखे खौ बहु बिद खच्छा।

तय खंड मंडल हैरान तार कोर बाजितर तय साच तख्त सुल्तान सुख मन कह कर राग सुन सुन मंडल लिवलाए अकथ कथा बिचारिये मनसा मने सुमाए उल्ट कमल अमृत भरिया इहो मन कतहु ना जाए अजप्पा जापना विसरै आद जुगाद समाए सब सखियां पंचे मिले गुरमुख निज करवास शब्द खोज इहो कर।

श्री प्रतहार तो ऐसा राजा श्री गोपाल जांचे कार गान गंधर्व रिखी बपड़े टाडिया गावंत अच्छा।

पंजवा कहन कहामन कौ कई केत है ऐसो जन बिरलो है सेवक जो तत योग कौ बेत है रहाओ दुख नाही सब सुख ही है रे एक है एकी नेत है बुरा नहीं सब पला ही है रे हार नहीं सब जेत सोग नाही सदा हर की है रे छोड़ नहीं किश लेता है कहो नानक जान हर हर हर है।

आनंद रंग विनोद हमारे, नामो गावन नाम ते आवन, नाम हमारे प्राण आधार है। हरहाओ नामो ज्ञान नाम इसनाना, हर नाम हमारे कार्य सवार है। हर नामो शोभा नाम बढ़ाई, पौजल विखम नाम हर तार है। अगम पदार्थ लाल अमोला,

पराशित दर्शन पेट मिटायो पयो परगास अंध उजियारा सहज समाज समायो कौन कहे तुम ते कछ नाही तुम समरथ अथायो किरपा निधान रंग रूप रस नाम नानक लै लायो कानड़ा महला पंजवा बूटत प्राणी हर जब तीर बिनसै मोह परम दुख पीर अरहाओ सिमरो दिन रैन गुर के चरना जत कद पेखो तुमरी सरना संत प्रसाद हर के गुण गाया गुर भेटत नानक सुख पाया कानड़ा महला पंजवा सिमरत नाम मने सुख पाई है साध जना मिल हर जस

अबर ओट में कोई न सूझे, एक हर की ओट में आस, क्या दीन करे अरदास, जो सब कड़ प्रभु निवास, प्रभु चरणन की मन प्यास, जन नानक दास कहित है तुमरा, हौं बल बल सद बल जास, कानड़ा मोहल्ला पंजवां कर छेवां, एक ओंकार सदगुर प्रसाद, जगत उदाहरण नाम प्रे तेरे, नाम निध नाम निदान हर केरे, हर रंग रंग रंग अनुपेरे, काहे रे मन मोहे मगनेरे, नैनो देख साध दरसेरे, सो पावे जिस लिखत ललेरे रहाओ, सेवो साध संत चिरनेरे, बांचो तूर पवित्र करेरे, अरसर मज्जन मैल कटेरे, सा सा त्यावो मुख नहीं मोरे, किस संग न चाले लाख करोरे, प्रभु जी को नाम अंत पकरोरे, मनसा मार एक निरंकेर, सगल त्याग है पाओ दूजेर, कामन कहां हां गुण प्रेतेर, वर्ण सा को एक टोलेर, दर्शन प्यास बहुत मन मेर।

संतना हर संतना हर संतना की रेन हियो अर्प देन प्रभ पय है किरपेन मान वो त्याग छोड़े हो।

संगा आठ निग्रह अतरैत बिटंगा हों रोग व्यापे चुके न पंगा काम क्रोध आत त्रिसन जरंगा सो मुक्त नानक जिस सतगुर चंगा कानड़ा मोहल्ला पंजवां कार सतवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद तिख बूझ गई गई मेरे साध जना पंच भागे चोर सहज सखनो हरे गुण गावती गावती गावती दर्श प्यार रगाओ जैसी करी प्रामोस्यों मोस्यों ऐसी हो कैसे करो यो तुम्हारे बल बले बल बले बल गई पहले पै संत पाए त्याए त्याए प्रीत लाए प्रवतान तेरो केरो जित जंतन कर विचार अनक दास कीर्त करे तुहारी सोई मिले जो पावतो जन नानक ठाकुर रहो समाए।

गोपाल नानक हरस ना गुण गाए। कानड़ा मोहल्ला पंजवा वार वार अनक डारो सुख प्रे सुहाग पलक रात रखाओ। कनक मंदर पाठ सेज सखी मोहे नाहे इनस्यो तात। मुक्त लाल अनक भोग बिन नाम नानक हाथ। रूखो भोजन भूम सैन सखी प्रे संग सुख बिहात।

आओ गृह से सुहावी अंगन चैना तोरो री तोरो पांच दूतन स्यों संग तोरो आए ना जाए बसे निज आसन ऊंद कमल बिग सोरो छुटकी होम में सोरो।

बहुरंगी सब एकत बचन चलावै गो गुरमुख एको एक पछाता गुरमुख होए लखावै गो गुरमुख जाए मिले निज महली अनहद शब्द बजावै गो जी जंत सब सिट्यो पाई गुरमुख शोभा पावै गो बिन गुर भेटे को मैल न पावै आए जाए दुख पावै गो अनेक जन्म बिछड़े मेरे प्रीतम कर कृपा गुरु मिलावै गो सतगुर मिलत महा सुख पाया।

बिनवंत नानक जन तूर बांचै, हर दर्स सहज सुमायण, सगले जंत पजो गोपालै, जब तब संजम पूर्ण कालै, नित पजो स्वामी अंतर जामी, सबल जन्म सबाया, गोविंद गायगे नित ते आई है, प्रवान सोई आया, जब ताप संजम हर हर निरंजन, गोविंद तन संग चालै, बिनवंत नानक कर दया दीजे, हर रतन बंद उपाले, मंगल चार चोज आनंदा, कर कृपा मेरे परमानंदा, प्रामिले स्वामी सुख गामी, इस मन की पुनिया, बजी बधाई सहजे समाई, बौड़ दुख ना रुनिया, ले कंठ लाए सुख दिखाए, विकार बिन से मंदा।

पर सज्जन नाम हर मैं मनतन नाम शरीर सब ऐसा गुरमुख पूरिया जन नानक सुन हर तीर पौड़ी हर उत्तम हरिया नाम है हर पुरख निरंजन मौला जो जप दे हर हर दिन सरात तिन सेवे चरण नित कौला नित सार समाले सब जी जंत हर वसे निट सब जौला सो बूझे जिस आ बुझाए सी जिस सदगुरु पुरख प्रसौला सब गावो गुण गोविंद हरे गोविंद हरे गोविंद हरे गुण गावत गुणी समोला श्लोक महला चौथा सुत्या हर प्रवचेत मान हर सहज समा समाए जन नानक हर हर चाओ मान गुर तुठा मेले माए महला चौथा हर इकस स्थिति पिरहड़ी हर इको मेरे चित जन नानक एक आधार हर प्रभ एक सते गत पत पौड़ी पंचे शब्द वजे मत गुरमत वडभागी अनहद वजया आनंद मूल राम सब देखया गुर शब्दी गोविंद गजया आद जुगाद वेस घर एको मत गुरमत घर प्रभ भजया हर देव हो दान दयाल प्रभ जन राखो घर प्रभ लजया सब धन कहो गुर सदगुरु गुर सदगुरु जित मिलघर पड़दा कजया श्लोक महला चौथा भगत सरोवर उछले सुबर परे वहन जिन्ना सदगुरु मन्या जन नानक वडभाग लहन महला चौथा हर घर नाम असंख हर हर के गुण कथन ना जाहे हर घर अगम अगाध हर जान केत विद मिले मिलाहे हर घर जस जपत जपंत जान एक तिल नहीं कीमत पाए जन नानक हर अगम प्रभ हर मेल लेहो लड़लाए पौड़ी हर अगम अगोचर अगम हर क्यों कर हर दर्शन पिखा किस वखर हुए सो वर्णिए तिस रूप ना रिखा जिस बुझाए आप बुझाए दे सोई जन दिखा सत संगत सदगुर चढ़ साल है जित हर गुण सिखा तन तन सो रसना तन कर तन सो पांदा सदगुरु जित मिल हर लेखा लिखा श्लोक महला चौथा हर हर नाम अमृत है हर जपिगे सदगुर पाए हर हर नाम पवित्र है हर जपत सुनत दुख जाए हर नाम तिनी आराध्या जिन मस्तक लिखिया तुर पाए हर दरगे जन पै नाइयन जिन हर मन वस्या आए जिन नानक ते मुख उजले जिन हर सुनिया मन पाए महला चौथा हर हर नाम निधान है गुरमुख पाया जाए जिन तुर मस्तक लिखिया तिन सदगुर मिलिया आए तन मन शीतल होया सांत वसी मन आए नानक हर घर चौंदया सब दाल दे दुख ले जाए पौड़ी हों वारिया तिन को सदा सदा जिन्ना सदगुर मेरा प्यारा देखया तिन को मिलया मेरा सदगुरु जिनको तुर मस्तक लेखया हर अगम ते आया गुरमती तिस रूप नहीं प्रव रेखया गुरभजन ते आया जिन्ना

कर रोल, वडभागी संगत मिले गुर सतगुर पूरा बोल। सत्याभो नर नारायणो नारायणो जित चूका जम झगड़ चघोल। सरोक महला चौथा, हर जन हर हर चौंदिया सर संध्या गावार। नानक हर जन हर लिव उबरे जिन संध्या तिस फिर मार। महला चौथा, अखी प्रेम कसाइया हर हर नाम पिखन जे कर दूजा देख दे जन नाम।

के गुण बहुत बहुत बहुत शोभा हम तुष कर कर वर्ण थे हमरी मत वस गत प्रतुमर जन नान के प्रसमरथे कल्याण मोहल्ला चौथा मेरे मान जप हर गुण अकथ सुन सही धर्म अर्थ सब काम मुख है जन पीछे लग फिर सही रहाओ सो हर हर नाम त्यावे हर जन जिस बड़भाग मथई जय दरगे प्रवलेखा मांग ते छुटे नाम त्याए थई हमरे दुख बहु जन्म जन्म के दुख होमे महल लग थई गुरतार कृपा हर जल ना आए सब केल बिख पाप गथई जन के हृदय अंतर प्रस्वामी जन हर नाम पज थई जय अंति अवसर आए बंत है।

हे स्वामी, हम पाथर रख बुढ़ थई, कल्याण मोहल्ला चौथा, हमरी चितवनी घर प्रव जाने, और कोई निंद करे घर जन की, प्रवता का कहया एक तिल नहीं माने, रखाओ और सब त्याग सेवा कर अचुत, जो सबसे ऊज ठाकुर भगवान, हर सेवा ते कालज होए ना सके, चरणी आए पवे हर जाने, जा को राख ले मेरा स्वामी, ताको सुमत दे पैकाने, ताको कोई अपर न साके, जा की भक्त मेरा प्रमाण, हर के चोज विडान देख जान, जो खोटा खरा एक निमक पछाने, ताते जन कौ अंध पया है, रिद्ध सुध मिले खोटे पछताने, तुम हर दाते समरथ स्वामी, एक मांगो तुम पासो हरदाने, जन नानक कहो हर कृपा कर दीजे, सद बसे हृदय मुझे हर चिराने, कल्याण मोहल्ला चौथा, प्रभु कीजे कृपा निधान, हम हर गुण गावेंगे, हों तुमरी करो नित्यास, प्राप मुहे कब गल लावेंगे, रखाओ हम बारक मुग्ध एयान, पिता समझावेंगे, सोत खिन खिन पूल बेगार, जगत पिद पावेंगे, जो हर स्वामी तुम देहो, सोई हम पावेंगे, मुझे दूजी ना ही ठाउर, जिस पे हम जावेंगे, जो हर पावे भगत, तिना हर पावेंगे, ज्योति ज्योत मिलाए, ज्योत रल जावेंगे, हर आपे हुए कृपाल, आप लिवलावेंगे, जन

रामो राम रवीजे, साधु साध साधन नीके, विल साधु हरं की जय रघाओ। जी जंत सब जग है जेता, मन डोलत डोल करीजे, कृपा कृपा कर साध मिलावो, जग थमन को था।

रामा राम राम पूज करीजे, मन तन अर्प तरो सब आगे, रस गुरमत ज्ञान दरड़ीजे रखाओ, ब्रह्म नाम गुण साग तरोव, नित चुन चुन पूज करीजे, आत्म दियो दियो है आत्म, रस लागे पूज करीजे, विवेक बुद्ध सब जग में निर्मल, विचर विचर रस पीजे, गुर प्रसाद पदार्थ पाया, सतगुर को यो मन दीजे, निर्मोल अत हीरो नीको, हीरे हीर बेधीजे, मन मोती साल है गुर सब दी,

जाके कर्म नाही तर्म नाही नाही सुच माला शिव जोत कन्नो बुद्ध पाई सदगुरु रखवाला जाके बरत नाही नेम नाही नाही बकबाई गात अवध की चिंत नाही सदगुरु फरमाई जाके आस नाही निराश नाही चित सुरत समझाई तंत कौ परम तंत मिलिया नानका बुद्ध पाई प्रभाती महला पहला ताका कहिया दर प्रवान बिख अमृत दुष सम कर जान क्या कहिए सर्वे रहा समाए।

की वास बनल पसौरे ता चरण लेव रही है। गुरमुख जी प्राण उपजे गुरमुख शिव कर जाइये गुरमुख नानक सच समाइये गुरमुख निज पद पाइये प्रभाती मुहला पहला गुर प्रसादी विद्या विचार पड़ पड़ पावे मान आपा मध्य आप प्रगासया पाया अमृत नाम करता तू मेरा जजमान।

जात जन मने पूछिए सच कर लिहो बताए, सा जात सा पत है जेहे कर्म कमाए, जन्म मरण दुख काटिए नानक छूट सुनाए, प्रभाती मोहल्ला पहला जागत बिनसे मूठो अंधा, गल फाही सिर मारे धंधा, आसा आवे मनसा जाए, उर्जी ताणी किशना बसाए, जाग

पाई, सदा जल निर्मल मैल ना लागे, सच नाम चित लाई। सुख सीगार सतगुरु दिखाया, नाम वड्डी वड्याई।

लेव उर्मन नाम लगान, अमृत रस पिया गुर शब्दी, हम नाम इटो कुर्बान। हमरे जग जीवन हर प्राण, हर उत्तम अंतर पायो, गुरमंत दियो हर कान रखाओ। आभो संत मेरो मेरे पाई, मिल हर हर नाम वखान। कित विद क्यों पाइये प्रभु अपना, मोको करो उपदेश हर दान। सत संगत में हर हर वसया, मेरे संगत हर गुण जान। वड़े भाग सत संगत पाई, गुर सतगुर परस भगवान। गुण गावे प्रभु अगम ठाकुर के, गुण गाए रहे हैरान। जन नानक गौ गुर कृपा धारी, हर नाम दियो खिनदान। प्रभाती महला चौथा, उगवे सूर गुरमुख हर बोले, सवरैन संभाले हर गाल। हमरे प्रभ हम लोच लगाई।

गुण गावत मन होए आनंद, आठ पैर सिमरो भगवंत, जाके सिमरन कर मल जाहे, सिद्ध गुर की हम चरणी पाहे, सुमत देव हो संत प्यारे, सिमरो नाम मोहे निस्तारे रखाओ, जिन गुर कहया मार्ग सीधा, सगल त्याग नाम हर गीधा, तिस गुर कह सदा बल जाइए, हार सिमरन जिस गुर ते पाईए, बूढ़ प्राणी जिन गुरे तराया, जिस प्रसाद मोहे नी माया, हलत पलत जिन गुरे सवारिया।

एको कर जान एहा मत शब्द है सार वे दुविधा माथे पवे शार करणी कीर्त गुरमत सार संत सभा गुण ज्ञान विचार मन मारे जीवित मर जान नानक नदरी नदर पछाण।

जागरण करे होमे मैल उतार सदा जागे कर अपना रख है पांच सकर काढ़े मार मन मेरे गुरमुख नाम त्याय जित मार घर पाईए मन से ही कर्म कमाए रखाओ गुरमुख सह तुन उपजे दुख होमे विच हो जाए हर नामा हर मन वसे है जे हर गुण गाए गुरमती मुख सोने।

कर स्नान कर चक्र बनाए अंतर की माल तब ही ना जाए। एत संजम प्रभ किन ही ना पाया भगवती मुद्रा मन मोया माया रहाओ। पाप करे पंचा के बसरे तीर्थ नाए कह सब उतरे बौर कुमावे हुए निशंक जमपुर बांध करे कालंक घूंगर बांध

है, प्रवृत्त माया संबंधन है, दयाल एक भगवान पुरख है, नानक सर्व जीव प्रतिपालक है, अनित वितंग अनित चेतंग अनित आशा बहुविध प्रकारंग अनित हेतंग अहंग बंधंग परम माया मलनंग विकारंग तिरंत जो अनेक जुषरागन न सिमरंत मलिन बुद्धिंग हे गोविंद कर्तमया नानक पद उदाहरण साध संग में ग्रंथ गिर पद पातालंग जलंत दे दीप वैश्वंतर भंत अघातोयंग तुरंगंग दुखंत गृह चिंता जन्म ता मरण अनक साधरंग न सिद्ध अते नानक अस्तंभंग अस्तंभंग अस्तंभंग शब्द साध स्वजन घोर दुखियंग अनक हत्यंग जन्म दारिद्रंग महाविखयादंग मिटंत सगल सिमरंत हर नाम नानक जैसे पावक काष्ट पसमं क्रोत अंधकार सिमरत प्रकाशं गुण रमंत आग खंडन रिद्व संत भय पीत दूत है कर्म कर्त महानिर्मल है जन्म मरण रहंत श्रोता

पूर्ण पुरख भगवान है, भगत वत्सल करुणामय है, घट घट बसंत वासुदेव है, पार ब्रह्म परमेश्वर है।

गोविंद नाम च पंत मिल साध संग है, नानक से प्राणी सुख बासन है, तैना साध समूह सूर अजितं संग नाहंग तन निमरताह आवदे गुण गोविंद रमण ओढ़ गुर शब्द कर चरमण है, आरूढ़ ते अश्वरथ नग है, बुजन ते प्रामार्ग है, विचरते निरभय सत्र सैना तायंते गोपाल कीर्तन है, जितते

साज संग खल पंडित कंठ रमणी आराम राम माला हस ऊच प्रेम धारणी जीपन जो उत्तम श्लोक उदरणंग नयन नंदनी गुरमंत्र हीन अस जो प्राणी।

ध्यानं सर्वत्र पूर्ण है, ज्ञानं हम दुख सुखं युक्त निर्मल निर्वारण है, दयालं सर्वत्र जिया पंच दोख विवर्जित है, भोजनं गोपाल कीर्तनं अल्प माया जल कमल रहित है, उपदेशं

कंद मूलं बसंते समीप कह रह ततरगते संसार है नानक सोग हरखं व्यापते छलं शिदरं कोड़ विघ्नं अपराधं किल बिख मलं।

रमंत गुण गोविंद नित प्रतय तारण शरण स्वामी रामण सील परमेश्वर है करण कारण समर्थ है दान देत प्रापूर्ण है निरास आस करण सगल अर्थ आले है गुण निधान सिमरंत नानक सगल जाचंत जाचक है दुर्गम स्थान सुगम महादुख सर्व सुखण है दुर्वचन भेद परमंग ताकत पिसरंगता सुजन है अस्तित्वं सोग हरखं पय खीणंगता निर्भवय पय अटवीयं महानगर वासं धर्म लखेण प्रामय साध संगम राम राम रमणं।

नरक विश्रामं भोजोन्नी परमामण चेत हरणं त्रैलोक गम्यं जब तब शील विदारण अल्प सुख अवित चंचल ऊच नीच समावण है।

ना उपर्जते विख्यंत जीवं वस्यं क्रोत नृत्यं क्रोत जथा मरकट है अनक शासन ताड़ंत जम दूत है तल संगे अधवंग नर है दीन दुख भंजन दयाल प्रभ नानक सर्ब जी रखया क्रोत हे लोभा लंपट संग सिर मोर है अनक लहरी कलोलते तावंत जी या भो प्रकारं अनक पांद बो डोलते नच मित्रं नच इष्टं नच बांधव नच मात पिता तव लज्जया अकरणं क्रोत अखात खाद्यं असाजयं सा समझया त्राहे त्राहे शरण स्वामी विज्ञापत नानक हर नर हर हे जन्म मरण मूलं अहंकारं पापात्मा मित्रं तजंत सत्रं दृढ़ंत अर्क माया विस्तीर्ण है अवंत जावंत थकंत जिया दुख सुख बहु भोगण परम भयान उद्यान रमणं मां विकट असाध रोगण है पैद्यं पार ब्रह्म परमेश्वर आराध नानक हर हर हरे।

सुंदर पुरख विराजत पेख मन बंचल खोजो तक चरण कहो कद पाई है हर का सोई ज तन बताए सखी प्रयो पाई है नैन न देखे साध से नैन बेहालिया करन न सुनगी नाद करन मुंद कालिया।

चरण कमल मन बेदेव पूजन सुरत संजोग सागर में उद्यान बान नवखण बसदा परम मूसन प्रेम परम कै कनो एक कर कर्म मूसन मस्कर प्रेम की रही जो अंबर छाए बीते बांधे कमल मह पवर रहे लपटाए जब तब संजम हरख सोख मान महत अर गर्भ मूसन निमखक प्रेम पर वार वार द्यों सर्ब मूसन मरमना जानई मर्त हित संसार प्रेम परमना बेदेव उर्जो मेथ प्योहार काब दब जब जारी है विशरत प्रेम बेहाल मूसन तब की मूसी है विशरत पुरख दयाल जाको प्रेम स्वाओ है चरण चितव मन माहे नानक बिरही ब्रह्म के आन न कतहु जाहे लख घाटी ऊचो कनो चंचल चीत बेहाल नीच कीच निमृत कनी करनी कमल जमाल कमल नयन अंजन श्याम चंदर बदन चित चार मूसन मगन मरम स्यों खंड खंड कर हार मगन भयो प्रे प्रेम स्यों पूदना सिमरत अंग प्रगट भयो सब लोम है नानक अधम पतंग।

ना है तो लूट ले, आराम नाम है लूट। फिर पाशे पछताओगे, प्राण जाएंगे शूट। कबीर ऐसा कोई ना जन्मे हो।

लोग सुबाया चल गयो हम तुम काम निदान कबीर मन पंखी पयो उड़ उड़ दे दिस जाए जो जैसी संगत मिले सो तय सो फल खाए कबीर जा को खोजते पायो सोई ठौर सोई फिर के तू पया जा को कहता और कबीर मारी मरो कुसंग की केले निकट जो बेर ओ चूले ओ चीरिए साकत संग ना है।

एक मरण ते दोए मुए, दोए मरण ते चार, चार मरण ते छह मुए, चार पुरख दोए नार। कबीर देख देख जग ढूंढया, कहूं न पाया ठौर। जिन हर का नाम न चेते हो, कहां भुलाने और। कबीर संगत करिए साध की, अंत करे निर्वाहो। साकत संग ना कीजिए, जाते हुए बिना हो। कबीर जग में चेत्यो जान कै,

क्या करे जो राम न करे सफाए। जे जे डाली भगत रो सोई मुर मुर जाए। कबीर अवरे को उपदेश ते

की मौज में रहो अंत अर आद। कबीर चरण कमल की मौज को कह कैसे उन्मान, तैबे को शोभा नहीं देखा ही परवान। कबीर देख के कहो तय ना को पतियाए, हर जैसा तैसा उही रहो हर

कबीर दावे दज होत है निर्दावे रहे निशंक, जो जन निर्दावे रहे तो गणे इंद्र सो रंक। कबीर पार समोहा सरवर भरा पी ना सके कोई नीर, भाग बड़े ते पायो तू पर पियो कबीर। कबीर प्रभाते तारे खिसे त्यों

पंडित जल मुए मूर्ख उबरे भाग कबीर संसा दूर कर कागद दे बिहाए बामन अखर सोधक हर चरणी चित लाए कबीर संत न छाडे संतई जो कोटक मिले असंत मलयागर भोयंगम बेडियो ता शीतलता ना तजंत कबीर।

कबीर सदगुर सूर में बायाबान जो एक लाग दिखी पोए गिर परया परा करे जे शेक। कबीर निर्मल बूंद आकाश की पर गई पूम बेकार बिन संगत यो मानई।

छोड़ई जम दिया दमामा आए। कबीर तरवर रूपी राम है, फल रूपी बैराग, छाया रूपी साध है,

का सफल फलंत ईर साधु संग प्राप्ति लिखिया होए लिलाट मुक्त पदार्थ पाई है ठाक ना अब घट काट कबीर एक घड़ी आदि करी आदि हूं ते आद भगतन से ती गोष्टे जो कीने सो लाभ कबीर भांग माशली सुरा पान जो जो प्राणी खाहे तीर्थ वर्त नेम किए ते सबे रसातल जाहे नीचे लोयन कर रखो ले साजन कट माहे सबर खेलो पीसो इसी लखावो नाहे आठ जाम चौसठ करी

वीर जो तो साध पिरम की शीश काट कर गोए खेलत खेलत हाल कर जो किश होए ता होए। कबीर जो तो साध पिरम की पाके से ती खेल काची सरसों पेल के ना खर पई ना तेल टूट डोले अंध गत हर चींत नही संत तय नामा क्यों पाई है बेन भगतो भगवंत हर सो हीरा छाड़ कह करे आन की आस ते नर दोजक जाएंगे

हेड़ा जले मजीठ ज्यों उपर अंगारा, फरीदा लोड़े दाख बजौरियां किकर बीजे जट। हंडे उनकताए दा पैदा लोड़े पट, फरीदा गलिये चिकड़ दूर कर।

सुखी खाए कै ठंडा पानी पियो। फरीदा देख पराई चोपड़ी ना तरसाए जियो। आज ना सुती कंत स्यों अंग

पुछई कन सुहागण नाव सोहरे पेये कंत की कंत अगम अथा हो नानक सो सुहागणी जो पावे बे परवाह नाती धोती संभही

फरीदा कोठे मंडप माड़िया एतना लाए चित मिट्टी पई अतोलवी कोई न होसी मित। फरीदा मंडप माल न लाए मर्ग सतानी चित तार साई जाए संभाल जिथे ही तो वंजना। फरीदा जिन्नी कमी नाए गुण ते कमड़े विसार मत शर्मिंदा थी वही।

मैंडे कपड़े काला मैंडा वेश कुनगी परिया मैं फिरा लोक कहे दरवेश तत्ती तोय न पल्लवे जेजल टुब्बी दे फरीदा जो डुहागन रब दी चूरेंदी चूरे जां कुआरी ता चाओ विवाही ता मामले फरीदा एहो पछोताओ वत कुआरी ना थी है कलर केरी छपड़ी आए उलथे हंज किंजू बोड़न ना पीवे उड़न संधि डंज हंस उड़ कोदरे पया।

पैर समाध सना हो ज्ञान गए आसन चढ़यो धर्म तनक कर गयो भगत सील है सर लड़यो पै निरपो हर अटल मान शब्द गुर ने जा गड्यो काम क्रोध लोभ मोह अवत पंच दूत बिखंडयो पलो पुहाल तेजो तना निरपतनाथ नानक बार गुर अमरदास सच सल भाण तय दल जितो इव युद्ध कर कण हर बूंद बसो रो मावल कुसुम बसंत गणंत न आवै रस करण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावे उदर ध्यान ज्ञान सदगुर के।

सदगुर प्रमाण बिद न सिरयो जग जस दूर बजायो। गुर रामदास कल उचरै तै अपाए अमर पद पायो। जग जितौ सदगुर प्रमाण मन एक तिहायो। तन तन सदगुर अमरदास जिन नाम दिरड़ायो। नाम रिद नाम निधान रिद सिता की दासी। तै सरोवर मिलयो पुरख भेट्यो अविनासी। आदले भगत जित लग तरे।

अवतार जय मसरा जगतारन को अवतार बनायो जप्यो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आयो काल समुद्र पय रूप प्रट हर नाम उदाहरण बसे संत जिस दे दुख दर्द निवारण निर्मल पेख अपार तास बिन अवर न कोई मान भय जिन जानियो पयो ते संसार सोई तारण गागन नव खंड मय जो स्वरूपी रहो पार पान मसरा कछ पेद नहीं गुर अर्जन प्रतख हर अजय गंग जल अटल शिव संगत सब नहावे नित पुराण बांचिए वेद ब्रह्मा मुख गावे अजय चवर सिर टुले नाम अमृत मुख लियो गुर अर्जन सिर शतर आप परमेश्वर दियो मेरे नानक अंगद अमर गुर गुर रामदास हर पै गयो हर वंश जगत ज संचरयो तो कवन कहे श्री गुरु मोयो देवपुरी मैं गयो आप

सो मेट न सके कोय, गुरमुख हर तन खटिया, गुर के शब्द विचार, ना पदार्थ पाया अटुट परे भंडार, हर गुरबाणी उच्चर है अंत न पारावार, नानक सब कारण करता करे वेखे सृजनहार, गुरमुख अंतर सहज है मन चढ़िया दसवें आकाश, इथे ऊंग ना पुख है हर अमृत नाम सुखवास, नानक दुख सुख व्याप्त नहीं जिथे आत्म राम प्रकाश, काम क्रोध का चोलड़ा सब गले आए पाए, एक उपजे एक बिन सजावे हुक्मे आवे जाए, जमन मरण न चुकई रंग लगा दूजे पाए, बंधन बंद पवाईयन करना कछु न जाए, जिनको कृपा तारियन तिना सतगुर मिलया आए, सतगुर मिले उल्टी पई मर जीव्या सहज सुपाए, नानक भगती रत्या हर हर नाम सुमाए, मानव चंचल मत है अंतर।

नाम हर गुरमुख हसै गुरमुख रोवै जे गुरमुख करे साई भगत होवै गुरमुख होवै सो करे विचार गुरमुख नानक पावे पार जिन्ना अंदर नाम निधान है गुरबाणी विचार तिनके मुख सद उजले तित सच्चे दरबार तिन बहिंदियां उड़दियां कदे ना विसरे जे आप बख्शे करतार नानक गुरमुख मिले ना विछड़े जे मिले सिरजनहार गुर पीरां की चाकरी महाकरड़ी सुखसार नदर करे जिस अपनी इस लाए हेत प्यार सतगुर की सेवे लग्या भौजल तरे संसार मन चिंदिया फल पाए सी अंतर विवेक विचार नानक सतगुर मिले प्रापाई है सब दुख निवारण हार मानव सेवा जो करे दूजे पाए चित लाए उतक लत कुटंब है माया मोह वधाए दर्घ है लेखा मंगी है कोई अंत न सकी छिड़ाए बिनावे सब दुख है दुखदाई मोह माए नानक गुरमुख नदरी आया मोह माया विछड़ सब जाए गुरमुख हुक्म मने सह केरा हुक्मे ही सुख पाए हुक्म सेवे हुक्म आराधे हुक्मे समय समाए हुक्म वर्त नेम सुसंजम मन चिंदिया फल पाए सदा सुहागण जे हुक्मे बुझे सतगुर सेवै लिवलाए नानक कृपा करे जिन ऊपर तिना हुक्मे लए मिलाए मानमुख हुक्म ना बुझे बपड़ी नित होमे कर्म कमाए वर्त नेम सो संजम पूजा पाखंड परम ना जाए अंतरों कसुद माया मोय विद जो हस्ती शारे उड़ाए जेने उपाए तसे ना चेत है बिन चेते क्यों सुख पाए नानक परपंच किया तुर करत है पूर्व लिखिया कमाए गुरमुख प्रतीत पई मन मानिया अनदिन सेवा करत समाए अंतर सतगुर गुरु सा पूजे सतगुर का दर्श देखे सब आए मनिए सतगुर परम विचारी जित मिले तिसना पुख सब जाए हौ सदा सदा बलिहारी गुर अपने जो प्र सच्चा दे मिलाए नानक कर्म पाया तिन सच्चा जो गुर चरणी लगे आए जिन प्रिया सो ने हो से सज्जन मैं नाल अंतर बार हों फिरा की हृदय रखा समाल जिन्ना एक मान एक चित त्याया सतगुर सो चित लाए इनकी दुख पुख हो में वड्डा रोग गया निर्दोख पै लिवलाए गुण गावे गुण उच्चर है गुण में सवे समाए नानक गुर पूरे ते पाया सहज मिलिया प्रव्याय मन मुख माया मोह है नाम ना लगे प्यार कूड़ कमावे कूड़ संग्रह कूड़ करे आहार बिख माया तन संच मर है अंत होए सब शार कर्म धर्म सो संजम कर है अंतर लोभ विकार नानक मनुख जे कमावे सो थाए ना पवे दर गए होए खुवार सबना रागा विच सो भला पाई जित वसया मन आए राग ना सब सच है कीमत कही ना जाए रागे ना दे बहारा इनी हुक्म ना बूझा जाए नानक हुक्मे बूझे तिना रास होए सतगुर ते सोजी पाए सब किश तिस ते होया ज्यों तिसे धीर जाए सतगुर विच अमृत नाम है अमृत कहे कहाए गुरमती नाम निर्मलो निर्मल नाम त्याय अमृत बाणी तत् है गुरमुख वसे मन आए हृदय कमल पर गासया ज्योति ज्योत मिलाए नानक सतगुर तिनको मेलियोन जिन तुर मस्तक पाग लिखाए अंदर तिसना अग है मनमुख भुख न जाए मोह कुटम सब कूड़ है कूड़ रहया लपटाए अनदिन चिंता चिंतवै चिंता बद्दा जाए जमन मरण न चुकई होमे कर्म कमाए गुर सरनाई उबरे नानक ले छड़ाए सतगुर पुरख हर ध्याएं दा सत संगत सतगुर पाए सत संगत सतगुर सेव दे हर मेले गुर मेलाए यो भौजल जगत संसार है।

बंगली पौन असले की पई बारी ए फैरों की पंचो नारी पंचम हरख दिसाख सुनाव है बंगालम माद माद वगाव है ललत बिलाव लगाव ही अपनी अपनी पांत अष्ट पुत्र पैरव के गावे गायन पात्र द्वितीया माल कौशक आलाप है संग रागनी पंचो थप है गोंड करी अरदेव गंधारी

जात पहारा तीर्ज सुनियार अहरण मत वेद हथियार पाओ खल्ला अगन तपताओ पांडा पाओ अमृत तित टाल घड़ी है शब्द सच्ची टकसाल जिन को नजर कर।

गावन तुदनो चित गुप्त लिख जानो लिख लिख धर्म विचारे गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सवारे गावन तुदनो इंद्र इंद्र आसन बैठे देवत्यां दर नाले गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदनो साध विचारे गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे गावन तुदनो पंडित पढ़ रखीसर जो जुग वेदा नाले गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुर्ग मश पयाले गावन तुदनो रतने उपाए तेरे अठसठ तीर्थ नाले गावन तुदनो जोत महाबल सूरा गावन तुदनो खानी चारे गावन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे सही तुदनो गावन जोत पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते तुदनो गावन से मैं चितना आवन नानक क्या बिचारे सोई सोई सदा सच साहेब साचा साची नाई हैपी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर देखै कीता अपना ज्यो तिस दी वड्याई जो तिस पावै सोई करसी फिर हुक्म ना करना जाई सो पात साहो सहा पात साहेब नानक रहन रजाई आसा महला पहला सुन वड्डा आखे सब कोए केवड़ वड्डा डीठा होए कीमत पाए ना।

सो पुरख निरंजनु हर पुरख निरंजनु हर अगमा अगम अपारा सब त्यावै सब त्यावै तुद जी हर सच्चे सृजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावो संत हो जी सब दुख विसारण हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी हर एको पुरख समाणा एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज विडाणा

तेरी अनक तेरी अनक करे हर पूजा जी, तब तापे जपे बेअंता, तेरे अनेक पड़े बो सिमरथ शास्त्र जी। कर किरिया खट कर्म करंता, से भगत भले जन नानक जी, जो भाव है मेरे हर भगवंता, तू मात पुरख अपरंपर करता जी, तू जेवड़े अवर ना कोई, तू जुग जुग वेको सदा सदा तू एको जी, तू निश्चर करता सोई, तू द्यापे पावै सोई वरतै जी, तू आपे करै सो होई, तू द्यापे सृष्ट सब उपाई जी, तुद आपे सिरज सब गोई, जन नानक गुण गावै करते के जी, जो सब सह का जानोई, आसा महला चौथा। तू करता सचियार मैं डा साई, जो तो पावै सोई थीसी, जो तू देह सोई हाँ पाई रहाओ, सब तेरी तू सबनी त्याया, जिसनों किरपा करह तिन नाम रतन पाया, गुरमुख लादा मन मुख गवाया, तुद आप विछोड़िया आप मिलाया, तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुद बिन दूजा कोई नाहे, जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल, जिसनों तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख वखाने, जिन हर सेवया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया, तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर ना कोए, तू कर कर वेख्या जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए, आसा महला पहला। तित सरवरड़ पहिले निवासा, पानी पावक तह किया, पंकज मोह पग नहीं चाले, हम देखा तै डूबी अले, मन एक ना चेत समूढ़ मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ, ना हाँ जति सती नहीं पड़या, मूर्ख मुगदा जन्म भया, प्रणवत नानक तिन की सरना, जिन तू नाही विसरिया, आसा महला पंजवां। पही प्रापत मान खुदे हुरिया, गोबिंद मिरन की यह तेरी बरिया, अवर काज तेरा कदै ना काम, मिल साध संगत पज केवल नाम।

आओ जप तप संजम धर्म ना कुमाया सेवा साधना जान्या हर राया कहो नानक हम नीच कर्मा शरण परे की रखो शर्मा सोहेला राग गौड़ी देव की महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद जय कर कीर्ति।

का सोहेला हाँ वारी जित सोहेला सदा सुख होए रहाओ। नित नित जियड़े संभालिया न देखेगा देवन हार, तेरे दाने कीमत ना पवै तिसदा ते कवन सुमार। संबत साहा लिखिया मिल कर पाव हो तेल, देहो सजन आसी सड़िया जो होवै साहब स्यो मेल। कर करे हो पहुंचा सदले नित पवन, सदन हारा सिमरी है नानक से देह आवन। राग आसा

अराग गौड़ी पूर्वी महला चौथा। काम क्रोध नगर बहु परया, मेर साधु खंडल खंडा है। पूर्व लिखत लिखे गुर पाया, मन हर लिव मंडल मंडा है। कर साधु अंजलि पुनवड्डा है, कर डंडौत पुनवड्डा है। रहाओ साक तहारा साधना जानिया, तन अंतरा हम मैं कंडा है। ज्यो ज्यो चल है चुबै दुख पावै, जम काल सह है सर डंडा है। हर जन हर हर नाम समाणे, दुख जन मरण पव खंडा है। अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर, बहु सोभ खंड ब्रह्मंडा है। हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे, हर राख राख बड़ बड़ा है।

संत टहल की बेला, इहां खाड़ चलो हरलाहा, आगे बसन सोहेला। औद कटै दिन सुरै नारे, मन गुरमिल का सवारे रहाओ। एहो संसार बिकार संसे मैं, तरयो ब्रह्म ज्ञानी, जिसे जगा

सब मिलै संसार, नाउ सदाए अपना होवै सिद्ध सुमार। जा पद लिखै ना पवै सबा पूज खुवार, जिन कौ सतगुर थापिया तिन मेट ना सकै कोए। ओना अंदर नाम निदान है, नामो प्रगट होए, नाउ पूजियै नाउ मनियै, अखंड सदा सच सोए। खेहू खेर लाइयै ता जियो केहा होए, जलियां सब सियाण पां उठी चलिया रोए। नानक नाम विसारिया दर गया क्या होए। श्री राग महला पहला।

बिन पौड़ी गढ़ क्यों चढ़ाओ, गुर हर ध्यान निहाल, गुर पौड़ी बेड़ी गुरु, गुर तुल्हा हर नाव, गुर सर सागर बोए थो, गुर तीर्थ दरियाओ, जित पावे उजली सतसर नामन जाओ। पूरो पूरो आखिए पूरे तख्त निवास, पूरे थान सुहावण पूरे आस निरास, नानक पूरा जे मिले क्यों घटे गुणतास। श्री राग महला पहला। आवहो भैने गल मिल है अंक सहेलड़िया, मिलकै करे कहानिया समर्थ कंत किया। साचे साहिब सब गुण अवगुण सब असाहा, करता सब को तेरे जोर, एक शब्द बिचारी है जा तू ता क्या होर। रहाओ जाए पुछो सुहागणी, तुसी राव्या किन्नी गुणी, सहज संतोख सिंगारिया, मिठा बोलनी, पिररी सालू ता मिले जा गुर का शब्द सुनी। केतियां तेरियां कुदरती, केवड़ तेरी दात, केते तेरे जी जंत सिफत करे दिन रात, केते तेरे रूप रंग केते जात्या जात। सच मिले सच उपजै, सच मैं सच समाए, सुरत होवे पत उगवे गुर बचनी पौ खाए। नानक सच्चा पात साहो आपे ले मिलाए। श्री राग महला पहला। भली सरी जे उबरी हो मैं मुई कराहो, दूत लगे फिर चाकरी सतगुर का वेसाहो। कल्प त्यागी बाद है सच्चा वे प्रवाहो, मन रे सच मिले पौ जाए। पै बिन निरपौ क्यों थी है, गुरमुख शब्द समाए रहाओ। केता आखण आखी है आखण तोट ना होए, मंगण वाले केतड़े दाता एको सोए। जिसके जी प्राण है मन वसे सुख होए, जग सपना बाजी बनी खिन में खेल खिलाए। संजोगी मिलेक से विजोगी उठ जाए, ज्योतिष पाना सो थिए अवर न करना जाए। गुरमुख वस्त विसाही है सच वखर सच रास, जिन्नी सच वणजया गुरपूरे साबास। नानक वस्त पछाण सी सत सौदा जिस पास। श्री राग महल पहला। तात मिले फुन तात कहो, सिफती सिफत समाए। लाल गुलाल गहबरा सच्चा रंग चढ़ाओ, सच मिले संतोखिया हर जपे कह पाए। पाई रे संत जना की रेण, संत सभा गुर पाई है मुक्त पदार्थ तेण। रहाओ ऊचो थान सुहावना, ऊपर महल मुरार, सच करनी दे पाई है दर कर महल प्यार। गुरमुख मन समझाई है आत्म राम विचार, तिरबद कर्म कमाई है आसंदेसा होए। क्यों गुरबिन तृप्ति छुट सी, सहज मिलया सुख होए। निज कर महल पछाणिए, नजर करे मल धोए, बिन गुर महल ना उतरे बिन हर क्यों करवास। एको शब्द विचारी है अवर ते अग्यास, नानक देख दिखाई है हो सत बलिहारे जास। श्री राग महला पहला। त्रिग जीवन दोहागणी, मुठ्ठी दूजे पाए, कलर केरी कंध ज्यों अहनस किर टह पाए। बिन शब्द सुख ना थिए पिर बिन दुख न जाए, मुंदे पिर बिन क्या सिंगार। दर कर टोई ना लह दरगे झूठ खुआर। रहाओ आप सुजान ना भुलई सच्चा वड़ किरसान, पहला तरती साध कै सच नाम दे दान। नौ

बिन गुण कामना आवई टह टेरी तनखे है, मेरे मन लै लाहा कर जाहे। गुरमुख नाम सलाही है, हम मैं निवरी पाहे रहाओ। सुन सुन गंडन गंडी है, लिख पढ़ बुझै पार। तृष्णा अहनस अगली, हों मैं रोग बेकार। ओह वे प्रवाहो अतोलवा, गुरमत कीमत सार। लक्ष्य आण पजे करी, लक्ष्यों प्रीत मिलाप। बिन संगत साधना त्रापिया, बिन नावै दुख संताप। हर जप जी अरे छुट्टी है, गुरमुख जी न आप। तन मन गुर पै वेचिया, मन दिया सिर नाल। त्रिपवन खोज टंडोलिया, गुरमुख खोज निहाल। सतगुर मेल मिलाया, नानक सो प्रभ नाल। श्री राग महला पहला, मरण की चिंता नहीं, जीवन की नहीं आस। तू सर्व जिया प्रतपाल ही, लेखे सास गिरास।

अंतर की गत जानिए गुर मिलिए संको तार, मोया जित कर जाइए तित जीवंद अमर मार। अनहद शब्द सुहावणे पाइए गुर विचार, अनहद बाणी पाइए तैहो मैं होए बिनाश, सतगुर सेवे आप।

मन बैरागी घर वसै सच पै राता होए ज्ञान महारस भोग वै बाहुड़ भूख ना होए नानक एहो मन।

जो दिसे चलनहार गुरमुख रवै सुहागणी सो प्रभ सेज पतार चारे अगन निवार मर गुरमुख हर जल पाए अंतर कमल प्रगासिया अमृत भरिया अगाए नानक सतगुर मीत कर सच पावै दरगह जाए। श्री राग महला पहला। हर हर जपो प्यारिया गुरमत ले हर बोल मन सच कस वट्टी लाई है तुलिया पूरे तोल कीमत किने ना पाई है रिदमान कमोल अमोल पाई रे हर हीरा गुरमाहे सतसंगत सतगुर पाई है अहनस शब्द सलाहे रहाओ सच वखर तन रास लै पाई है गुर प्रगास जो अग्न मरै जल पाया त्यों तृष्णा दासन दास जमजन दारन लग गई यो भौजल तरै तरास गुरमुख कूड़ ना पावई सच रते सच पाए सागत सच ना पावई कूड़े कूड़ी पाए सच रते गुर मेले सचे सच समाए मन मैं माणक लाल नाम रतन पदार्थ हीर सच वखर तन नाम है कट कट गहर गंभीर नानक गुरमुख पाई है दया करे हर हीर। श्री राग महला पहला। परमे पाहे न विजवै जे पवै दिसंतर देस अंतर महल न उतरै त्रिग जीवन त्रिगवेश होर कितै भगत न होवई बिन सतगुर के उपदेश मन रहे गुरमुख अगन निवार गुर का कहया मन वसै होमै तृष्णा मार रहाओ मन मानक निर्मोल है राम नाम पत पाए मिल सत संगत हर पाई है गुरमुख हर लिवलाए आप गया सुख पाया मिल सलल है सलल समाए जिन हर हर नाम ना चेत्यो सो अवगुण आवै जाए जिस सतगुर पुरख ना भेट्यो सो भौजल पचै पचाए एहो मानक जियो निर्मोल है इउ कौडी बदलै जाए जिन्ना सतगुर रस मिलै से पूरे पुरख सुजान गुरमिल पौजल लंगी दरगह पत परवान नानक ते मुख उजले तुन उपजै शब्द निशान। श्री राग महला पहला। वणज करो वणजारियो वखर लेहो समाल तैसी वस्त विसाही जैसी निभ नाल अगे साहो सुजान है लैसी वस समाल पाई रे राम कहो चितलाए हर जस वखर लै चलो सहो देखे पति आए रहाओ जिन्ना रास ना सच है।

मैं मछली कैसे अंत लहां, जह जह देखा तह तह तू है, तुझ ते निकसी फूट मरा। ना जाना मैं ओ ना जाना जाली, जां दुख लागे ता तुझे संभाली रहाओ। तू पर

शब्द मिलै ता हर मिलै सेवा पवै सब थाए पारस परस आए पारस होए ज्योति ज्योत समाए जिनका पूर्व लिखिया तिन सतगुर मिलिया आए मन भुखा भुखा मत करै मत तू करै पुकार लख 84 जिन शरीर।

से विष्टा महे समाए, तिनका जन्म सफल है जो चलै सतगुरु पाए। कुल उधारै अपना धन जने दी माए, हर हर नाम ते आई है जिसनों कृपा करे रजाए। जिनी गुरमुख नाम ते आया विचों आप गवाए, ओए अंदरों बारों निर्मले सच्चे सच समाए। नानक आए से प्रवान है जिन गुरमति हर ते आए, श्री राग महला तीजा हर भगता हर तन रास है गुर पूछ करै व्यापार। हर नाम सलाहन सदा सदा वखर हर नाम आधार, गुर पूरे हर नाम दृढ़ाया हर भगता अतुट भंडार। भाई रे इस मन को समझाए, ए मन आलस क्या करै, गुरमुख नाम ते आए रहाओ। हर भगत हर का प्यार है जे गुरमुख करे विचार, पाखंड भगत ना हो वही दुबदा बोल खुवार। सो जन रलाया ना रलै जिस अंतर बबेक विचार, सो सेवक हर आखिया जो हर राखै उर तार। मंतन सो पे आगे धरे होमै विचों मार, तन गुरमुख सो प्रवान है जे कदे ना आवै हार। कर्म मिलै तां पाईऐ मिण कर मैं पाया ना जाए। लख चौरासी तरस दे जिस मेले, सो मिले हर आए। नानक गुरमुख हर पाया सदा हर नाम समाए। श्री राग महला तीजा सुख सागर हर नाम है गुरमुख पाया जाए। अंदर नाम त्याई है सहजे नाम समाए, अंदर रचै हर सच स्यों रसना हर गुण गाए। भाई रे जग दुखिया दूजै पाए, गुरसरनाई सुखल है अंदर।

बिन गुर महल ना पाइए, नाम ना प्राप्त होए, ऐसा सतगुर लोड लहो। जिद्दू पाइए सच सोए, असर संघारे सुख वसै, ज्योतिष पावे सो होए। जिहा सतगुर कर जानिया, तेहो जिहा सुख होए, एहो सहसा मूले नाहीं, भाव लाए जन कोए। नानक एक जो दोई मूर्ति, शब्द मिलावा होए। श्री राग महला तीजा। अमृत छोड़ बिख्या लोभाणे, सेवा करे विडाणी, अपना धर्म गवावै बूझै नाहीं, अनदन दुख विहाणी। मनमुखे अंद न चेतही, डूमोए बिन पाणी, मन रे सदा पजो हर सरनाई। गुर का शब्द अंतर वसै, तां हर विसर ना जाई। रहाओ एहो शरीर माया का पुतला, विच हमै दुष्टि पाई। आवण जाना जमण मरना, मनमुख पत गवाई। सतगुर सेव सदा सुख पाया, ज्योति ज्योत मिलाई। सतगुरु की सेवा यत सुखाली, जो इच्छा सो फल पाए। जत सत तप पवित्र शरीरा, हर हर मन वसाए। सदा आनंद रह दिन राती, मिल प्रीतम सुख पाए। जो सतगुरु की शरणागति, हों तन कै बल जाओ। दर सच्चा सच्ची वडियाई, सहजे सच समाओ। नानक नदरी पाई है, गुरमुख मेल मिलाओ। श्री राग महला तीजा। मनमुख कर्म कमावणे, जो दोहागण तन सिंगार। सेजै कंतना आवई, नितनित होए खुवार। पिरका महल ना पावई, ना दिसै घर बार। भाई रे एक मन नाम ते आए, संता संगत मिल रहे। जप राम नाम सुख पाए। रहाओ गुरमुख सदा सुहागणी।

अंतरा दुख भ्रम कटियै सुख प्राप्त होए, गुर कै पाणे जो चलै दुख ना पावे कोई। गुर के पाणे विच अमृत है सहजे पावे कोए, जिन्ना प्रभ तिन पिया हमें विचों खोए। नानक गुरमुख नाम तिहाई है सच में लावा होए। श्री राग महला तीजा जा पिर जाना अपना, तन मन अगे धरे सुहागणी कर्म कमाम दिया से ही कर्म करे। सहजे सच मिलावड़ा सच वडाई दे भाई रे, गुरबिन भगत ना होए बिन गुर भगत ना।

आओ आपे जग जीवन सुदाता आपे बख्श मिलाए जी जानते क्या विचारे क्या को आख सुनाए गुरमुख आपे दे वड़ाई आपे सेव कराए दे कुटा मोए लोभाना चलद्या नाल न जाई सतगुर सेव गुण निधान पाया तिस दी कीम ना पाई हर प्रभ सखा मीत प्रभ मेरा अंते होए सखाई अपने मन चित कह कहाए बिन गुरे आप ना जाई हर जो दाता भगत वछल है कर कृपा मन वसाई नानक सोभा सुरत दे प्रभ आपे गुरमुख दे वड़ियाई श्री राग महला तीजा धन जननी जिन जाया धन पिता प्रधान सतगुर सेव सुख पाया विचों गया गुमान दर सेवन संत जन खड़े पायन गुणी निदान मेरे मन गुरमुख त्याए हर सोए गुर का शब्द मन वसै मन तन निर्मल होए रहाओ कर कृपा कर आया आपे मिलया आए गुर शब्दी सालाही है रंगे सह सुभाए सच्चे सच समाया मिल रहे ना विछड़ जाए जो कुछ करना सो कर रहा अवर ना करना जाए चिरी विछुने मेलिया नो

कुदम करे पशुपंखिया दिसै नाही काल, ओतै साथ मनुख है फाथा माया जाल। मुक्ते से ही पाली है जे सच्चा नाम संभाल, जो कर छड गवावना सो लगा मन माहे। जिथे जाए तुद वर्तना तिसकी चिंता नाहे, फाथे से ही निकले जे गुर की पैरी पाहे। कोई रख ना सकई दूजा को ना दिखाए, चारे कुंडा पाल के आए पया सरनाए। नानक सच्चे पात साहे डुबदा लिया कढ़ाए, श्री राग महला पंजवा। कड़ी मुहत का पाहुना का स्वरण हार, माया काम व्यापिया समझे नाही गावार। उठ चलिया पछताया परया वस जंदार, अंधे तू बैठा कंदी पाहे। जे होवी पूर्व लिखिया ता गुर का बचन कमाहे। रहाओ हरी नाही नह डडरी पक्की वडन हार, लै लै दात पहुतिया लावे कर तैयार। जां होवा हो।

जातो बिनस निदान, जाके हृदय हर वसै सो पूरा प्रधान। साधु की हो रेण का अपना आप त्याग, उपाव सियानत सगल छड गुर की चरणी लाग। तिसै प्राप्त रतन होए जिस मस्तक होवे भाग, तिसै प्राप्त भाई हो जिस देवै प्रभ आप। सतगुर की सेवा सो करे जिस बिन से हम मैं ताप, नानक कहो गुर भेटिया बिन से सगल संताप। श्री राग महला पंजवा। एक पछाणु जी का एको रखन हार, एक सका मन आसरा एको प्राण आधार। ते शरण आई सदा सुख पार ब्रह्म करतार, मन मेरे सगले उपाव त्याग। गुर पूरा आराध नित एक सकी लिवलाग रहाओ, एको पाई मित एक एको मात पिता। एक सकी मन टेक है जिन जियो पिंड दिता, सो प्रभ मनो ना विसरै जिन सब किश वस कीता। घर एको बाहर एको थान थन अंतर आप, जी जन तो सब जिन किए आठ पहर तिस जाप। एक सेती रतिया ना होवी सोग संताप, पार ब्रह्म प्रभ एक है दूजा नाही कोए। जियो पिंड सब तिसका जो तिस पावे सो होए, गुर पूरे पूरा पया जप नानक सच्चा सोए। श्री राग महला पंजवा। जिन्ना सतगुर स्यो चित लाया से पूरे प्रधान, जिनको आप दयाल होए तिन उपजे मन ज्ञान। जिनको मस्तक लिखिया तिन पाया हर नाम, मन मेरे एको नाम ते आए। सर्व सुखा सुखी उपजहै दरगह पैंदा जाए रहाओ। जन मरण का पाओ गया पाओ भगत गोपाल, साधु संगत निर्मला आप करे प्रतपाल। जन्म मरण की मल कटिया गुरदर्शन देख निहाल, थान थन अंतर रव।

जिन मन वसिया पार ब्रह्म से पूरे प्रधान, तिन की शोभा निर्मली प्रगट पई जहान। जिनी मेरा प्रभ त्याया नानक तिन कुर्बान। श्री राग महला पंजवा, मिल सतगुर सब दुख गया, हर सुख वसिया मन आए, अंतर जोत प्रगासिया एक सो लिवलाए। मिल साधु मुखी उजला पूर्व लिखिया पाए, गुण गोविंद नित गावणे निर्मल सच नाए। मेरे मन गुर शब्दी सुखोए, गुर पूरे की चाकरी बिरथा जाए ना कोए रहाओ। मन किया इच्छा पूरिया पाया नाम निधान, अंतर जम इसदा संग करना हर पिछान। गुर प्रसादी मुखी उजला जप नाम दान इसनान, काम क्रोध लोभ बिनसया।

आवन जाना रह गया आप हुआ मेहरबान, सच महल कर पाया गुर का शब्द पहचान, भक्त जना को राखदा अपनी कृपा धार, हालत पलत मुख उजले साचे के गुणसार, आठ पहर गुणसार दे रते रंग अपार, पार ब्रह्म सुख सागर नानक सद बलिहार। श्री राग महला पंजवा। पूरा सतगुर जे मिले पाइए शब्द निधान, कर कृपा प्रभ अपनी जपिए अमृत नाम, जन

कीमत कहन ना जाइए सागर गुणी अथाहो, वड भागी मिल संगति सच्चा शब्द विसाहो, कर सेवा सुख सागर है सिर साहा पातशाहो, चरण कमल का आसरा दूजा नाही ठाओ, मैं तर तेरी पार ब्रह्म तेरे तन रहाओ, निमाणिया प्रमाण तू तेरे संग समाओ, हर जपिए आराधिए आठ पहर गोविंद, जी प्राण तन तन रखे कर कृपा राखी जिंद, नानक सगले दुख उतारियन प्रभ पार ब्रह्म बख्शिंद। श्री राग महला पंजवां, प्रीत लगी।

दीन दर्द दुख भंजना सेव कै सत पाए अचरज रूप निरंजनो गुरमे लाया माए पाई रे मीत करो प्रभ सोए माया मोह प्रीत त्रिग सुखी ना दिसै कोए रहाओ दाना दाता सीलवंत निर्मल रूपया पार सखा सहाय अत वड्डा ऊंचा वड्डाया पार बालक बिरद ना जानिए निचल तिस दरबार जो मंगिए सोई पाईए नेदारा आधार जिस पेखत किल विखे हरै मन तन होवे सांत एक मन एक त्याईए मन की लहे परांत गुण निदान नव तन सदा पूर्ण जा की दात सदा सदा आराधिए।

वन्य पूरव राख ले हो प्रभ करण हार, जी जंत कर दया बिन प्रभ कोई ना रखण हार, महा बिकट जम पया नानक नाम ना विसरो कर अपनी हर माया।

हौं मैं रोग भ्रम कटिया ना आवे ना जाग, कर संगत तू साध की अड़ सड़ तीर्थ नाओ, जियो प्राण मन तन हरे साचा एहो सवाओ, ऐथे मिले वडियाईया दरगे पावे थाओ, करे कराए आप प्रभ सब किच सही हाथ, मारा पे जीवाल दा अंतर बाहर साथ, नानक प्रभ शरणागति सर्ब कटा के नाथ। श्री राग महला पंजवा, शरण पए प्रभ अपने गुर होवा कृपाल, सतगुर कै उपदेसे है बिनसे सर्ब जंजाल, अंदर लगा राम नाम अमृत नदर निहाल, मन मेरे सतगुर सेवा सार, करे दया प्रभ अपनी एक निमख न मनो विसार, रहाओ गुण गोविंद नित गावी अवगुण कटन हार, बिन हर नाम ना सुख होए कर डिठे विस्थार, सहजे शिव तीरतिया पवजल उतरे पार, तीर्थ वर्त लख संजमा पाई ऐ साधु तूर, लूक मावे किस्ते जां वेखे सदा हदूर, थान थंतर रव रहया प्रभ मेरा भरपूर, सच पातशाही अमर सच सचे सच्चा थान, सची कुदरत तारियान सच सिर जियोन जहान, नानक जपिया सच नाम सदा सदा कुर्बान। श्री राग महला पंजवा, उद्यम कर हर जापना वडभागी तन खाट, संत संग हर सिमरना मल जन्म जन्म की काट, मन मेरे राम नाम जप जाप, मन इच्छे फल पुंच तू सब चूके सोग संताप, रहाओ जिस कारण तन तारिया सोपर डिठा नाल, जल थल महियल पूरिया प्रभे अपनी नगर ने।

जिन सेव्या प्रभ अपना सोई राज नरिंद अवसर हर जस गुण रमन जित कोट मजन इसनान रसना उचरै गुणवती कोय न पुजै दान दृष्ट धार मन तन वसै दयाल पुरख मेहरवान जियो पिंड तन तिसदा हो सदा सदा कुरबान मिलिया कदे न विछड़ै जो मेलिया करतार दासा के बंधन कटिया साचा सृजनहार भूला मार्ग पायो न गुण अवगुण ना विचार नानक ते शरणागति जे सगल कटाया धार श्री राग महला पंजवा रसना सच्चा सिमरी है मन तन निर्मल होए मात पिता साके अगले तिस बने अवर नाम कोए मेहर करे जे अपनी चसन विसरै सोए मन मेरे साचा सेव जिचर सास बिन सच्चे सब कूड़ है अंते होए विनाश रहाओ साहिब मेरा निर्मला तिस बिन रहन ना जाए मेरा मन तन भुख अत अगली कोई आन मिलावे माए चारे कुंडा पालियां।

पूरा जिस भंडार सदा सदा सा लाहीऐ अंत ना पारावार। परवतगार सलाहीऐ जिस दे चलत अनेक सदा सदा आराधीऐ एहा मत वसेख। मन तन मिठा तिस लगै जिस मस्तक नानक लेख। श्री राग महला पंजवां संत

सतगुरु की सेवा लाग जो दिसै सो विनसना मन की मत त्याग रहाओ ज्यों कुकर हर काया तावै दै दिस जाए लोभी जंत ना जानई पख अपख सब खाए काम क्रोध मद व्यापिया फिर जोनी पाए माया जाल पसारिया पितर चोग बनाए तृष्णा पंखी फासिया निकस ना पाए माए जिन किया तिसै ना जानई फिर आवै जाए अनक प्रकारी मोहया बहुविदेहो संसार जिसनो रखै सो रहै समर्थ पुरख अपार हर जन हर लिव उदरे नानक सद बलिहार श्री राग महला पंजवां घर दूजा।

सतगुर से प्यारो, क्या थोड़ी बात गुमानो रहाओ। जैसे रैन प्राहुणे उठ चल सह प्रभात, क्या तू रता ग्रत स्यों सब फुल्ला की बागात। मेरी मेरी क्या करे जिन दिया सो प्रभ लोड़, सर पर उठी चलना षड जासी लख करोड़। लख चौरासी परम त्या दुर्लभ जन्म पाए।

सर्व को आधार। गुर के चरण मन मैं त्याए, छोड़ सगल सियाण पा सा शब्द लिवलाए रहाओ। दुख कलेस ना पौ वे आपै, गुरमंत्र हृदय होए कोट जतना कर रहे गुरबिन तरियो ना कोए। देख दर्शन मन साधारै, पाप सगले जाहे हाँ तिल कै बलिहारणै जे गुर की पैरी पाहे। साध संगत मन वसै, साच हर का नाओ सेवड़ पागी नानका जिन्ना मन एहो पाओ। श्री राग महला पंजवां। संच हर तन पूज सतगुर, छोड़ सगल विकार जिंतु साज सुवारिया हर सिमर होए उदार। जप मन नाम एक अपार, प्राण मंतन जिने दिया हृदय का आधार रहाओ। काम क्रोध अहंकार माते व्यापिया संसार, पौ संत सरणी लाग चरणी मिटै दुख अंधार। सत संतोख दया

कहो नानक गुर परम काटिया, सगल ब्रह्म विचार श्री राग महला पंजवा, दो कृत सुकृत मंदे संसार सगलाना, दोह हूं ते रहत भगत है कोई विरला जाना, ठाकुर सर्वे समाना, क्या कहो सुनो स्वामी, तू वड पुरख सुजाना, रहाओ मान अभमान मंदे सो सेवक नाही, तत्सम दर्शी संतो कोई कोट मंदा ही, कहन कहावन एहो कीर्त करला, कथन कहन ते मुक्ता गुरमुख कोई विरला, गत अवगत कश नदर ना आया, संतन की रेण नानक दान पाया, श्री राग महला पंजवा घर सतवा तेरा।

पूरा सतगुर भेटिया बिनस्या सब जंजाल मेरे सतगुरा हाँ तुध विटो कुरबान तेरे दर्शन कहो बलिहार तुस दिता अमृत नाम रहाओ जिन तू सेव्या पाओ कर सही पुरख सुजान तिना पिछे छुट्टी है जिन अमृत तिना पिछे छुट्टी है जिन अंदर नाम निदान गुरजेवड़ दाता को नहीं जिन दिता आत्मदान आए से प्रवान है जिन गुर मिलिया सुभाए सच्चे से तीरतया दरगह बैसन जाए करते हथ वडे आईया पूर्व लिखिया पाए सच करता सच करन हार सच साहिब सच टेक सचो सच वखाणिया सचो बुद्ध बबेक सर्ब निरंतर रव रहया जप नानक जीवै एक श्री राग महला पंजवां गुर परमेसर पूजिय मन तन लाए प्यार सतगुर दाता जी का सब सह दे आधार सतगुर बचन कमावणे सच्चा एहो विचार बिन साधु संगत रतिया माया मोह सब शार मेरे साजन हर हर नाम संभाल साधु संगत मन वसै पूर्ण होवै काल रहाओ गुर समरथ अपार गुर वडभागी दर्शन होए गोरिया गोचर निर्मला गुरजेवड़े अवर ना कोए गुर करता गुर करनहार गुरमुख सच्ची सोए गुरते बाहर किश

श्री राग महला पहला कर पहला अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद आख आख मन वावना ज्यों ज्यों जापै वाए जिसनों वाए सुनाई है सो केवड़ कित थाए आखण वाले जेतड़े।

अंबड़ कोई न सकई, हों किसनो पुछन जाओ। वरना वरन ना पावनी, जे किसे वड़ा करे, वड़े हथ वड़े आईया, जय पावै तैं दे। हुक्म सवारे अपने, चसा ना ढिल करे, सबको आखे बहुत बहुत, लैणे कै विचार। केवड़दा ताय आखी दे कै रहा सुमार, नानक तोट ना आवई, तेरे जुगे जुगे पंडार। महला पहला सबे कंत महेलिया, सगलियां करे सिंगार। गणत गणावने आईया, सुहावे स्वीकार। पाखंड प्रेम ना पाई है, खोटा पाज खुवार। हर जियो इउ पिरड़ावे नार, तुद पावन सोहागणी, अपनी कृपा लह सवार। रहाओ गुरसबदी सिंगारिया, तन मन पिर कै पास। दोए कर जोड़ खड़ी तक, सच कह अरदास। लाल रती सच पै वसी, पाए रती रंगरास। प्रेकी चेरी कांडी है, लाली माने नाओ। साची प्रीतना तुटई, साचे मेल मिलाओ। शब्द रती मन वेदया, हो सतबलिहार जाओ। सा तन रंड ना बैसई, जे सतगुर माहे समाए। पेरी सालू नौ तनौ, साचो मरै ना जाए। नित रवै सोहागणी, साची नदर रजाए। साच धड़ी धन मांडी है, कपड़ प्रेम सिंगार। चंदन चीत वसाया, मंदर दसवां द्वार। दीपक शब्द विगासया, राम नाम उरहार। नारी अंदर सोहनी, मस्तक मणि प्यार। शोभा सुरत सुहावनी, साचे प्रेम अपार। बिन पिर पुरख ना जानई, साचे गुर कै हित प्यार। निस अंधियारी सुतिए, क्यों पिर बिन रहन विहाए। अंक जलो तन जालियो, मन तन जल बल जाए। जा तन कंत ना राविया, ता बिरथा जो बन जाए। सेजै कंत महलड़ी, सूती बूझ ना पाए। हों सुती पिर जागना, किसको पूछो जाए। सतगुर मेली पै वसी, नानक प्रेम सिखाए। श्री राग महला पहला, आपे गुण आपे कथै, आपे सुन विचार। आपे रतन परख तू, आपे मोल अपार। साचा मान महत तू, आपे देवन हार। हर जियो तू करता करतार, ज्यो पावै त्यो राख तू। हर नाम मिलै आचार, रहाओ। आपे हीरा निर्मला, आपे रंग मजीठ। आपे मोती उजलो, आपे भगत बसीठ। गुर कै शब्द सलाहना, घट घट डीठिया डीठ। आपे सागर बोए था, आपे पारिया पार। साची वाट सुजान तू, शब्द लंगावन हार। निडरिया डर जानिया, बाजगुरु गोबार। आश्र करता देखिए, हुर केती आवै जाए। आपे निर्मल एक तू, हुर बंदी तंदै पाए। गुर राखे से उबरे, साचे सुन लिवलाए। हर जियो शब्द पछाणिए, साच रते गुरवाक। ते तन मैल न लगई, सच कर जस्यो ताक। नदर करे सच पाईए, बिना मैं क्या साक। जिनी सच पछाणिया, से सुखिए जुगचार। हों मैं तृष्णा मार कै, सच रखिया उरता।

पार संत सवा सुखी उपजै गुरमुख नाम आधार खिन मैं उपजै खिन खपै खिन आवै खिन जाए शब्द पछाण रव रह ना तिसकाल संताए साहेबा तुल ना तोलिए कथन ना पाया जाए वापारी वन जा रिया आए वजो लिखाए कारक मावे सच की लाहा मिलै रह जाए पूंजी साची गुर मिलै ना तिस तिल ना तमाए गुरमुख तोल तोलाए सी साचित राजी तोल आसा मनसा मोहनी गुर ठाकी सच बोल आप तोलाए तोल सी पूरे पूरा तोल कथना कहन ना छुट्टिया ना पढ़ पुस्तक पार काया सोच ना पाई बिनहर भगत प्यार नानक नाम ना विसरै मिले गुर करतार श्री राग महला पहला सतगुर पूरा जे मिलै पाइए रतन विचार मन दीजै गुरे अपने पाइए सर प्यार मुक्त पदार्थ पाइए अवगुण मेटन हार पाई रे गुरबिन ज्ञान ना होए पूछो ब्रह्मे नारद बेद ब्यास कोय रहाओ ज्ञान ध्यान तुन जानिए कथ कहावै सोए सफलो बिरख हरियावला शाव कनेरी होए।

महले पहले सतारह अष्टपदियां, श्री राग महला तीजा घर पहला अष्टपदियां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, गुरमुख कृपा

आए से प्रमाण है सब कुल का करे उधार। सब नदरी कर्म कमाम दे नदरी बाहर ना कोए। जैसी नदर कर देखे सच्चा तैसा ही को होए। नानक नाम वडाइया कर्म प्राप्त होए। श्री राग महला तीजा गुरमुख नाम ते आई है मनमुख बूझ ना पाए। गुरमुख सदा मुखी उजले हर वस्या मन आए। सहजे ही ते सुख पाई है सहजे रह समाए। पाई रे दासन दासा होए। गुर की सेवा गुर भक्त है विरला पाए कोए। रहाओ सदा सुहाग सुहागनी जे चले सतगुर पाए। सदा पर नहीं चल पाई है ना ओह मरे ना जाए। शब्द मिली ना विछड़े पिरके अंक समाए। हार निर्मल अतुजला बिन गुर पाया ना जाए। पाठ पढ़े ना बूझई पेखी परम पुलाए। गुरमति हर सदा पाया रसना हर रस माए। माया मोह चुकाया गुरमति सहि सुभाए। बिन शब्द जग दुखिया फिराए मन मुखा नो गई खाए। सबदे नाम ते आई है सबदे सच समाए। माया पूले सिद्ध फिरे समाध ना लगे सुभाए। तीने लो व्यापत है अध कही लपटाए। बिन गुर मुक्त ना पाई है ना दुबदा माया जाए। माया किसनो वाखी है क्या माया कर्म कमाए। दुख सुख एहो जियो बद है अहो मैं कर्म कमाए। बिन शब्द परम ना चुकई ना विचो हो मैं जाए। बिन प्रीति भक्त ना हो वई बिन शब्द थाए ना पाए। शब्दे हो मैं मारी है माया का परम जाए। नाम पदार्थ पाई है गुरमुख सहि सुभाए। बिन गुर गुण ना जापनी बिन गुण भगत ना होए। भगत वछल हर मन वसिया सहज मिलिया प्रभ सोए। नानक शब्दे हर साला ही है कर्म प्राप्त होए। श्री राग

ब्रह्म के बेते शब्द पछाण है हो मैं जात गवाई सुर नर तिन की बाणी गावे कोई न मेटे भाई दैत पुत कर्म धर्म किछ संजम ना पड़े दूजा पाओ न जाने सतगुर भेटे है निर्मल होवा अंदन नाम वखाणे एको पड़े एको ना बूझे दूजा अवर न जाने खड़ दर्शन योगी सन्यासी बिन गुर परम भुलाए सतगुर सेवै ता गत मित पावै हर जियो मन वसाए सच्ची बाणी से उचित लागै आवन जान रहाए पंडित पढ़ पढ़ वाद वखाणै बिन गुर परम भुलाए लख चौरासी फेर पया बिन शब्द मुक्त ना पाए जा नाउ चेतै ता गत पाए जा सतगुर मेल मिलाए सत संगत में नाम हर उपजै जा सतगुर मिलै सुभाए मन तन अर्पी आप गवाई चला सतगुर पाए सतबलिहारी गुर अपने विटाओ जे हर से तीच तलाए सो ब्राह्मण ब्रह्म जो बिंदे हर से तीरंग राता प्रभ निकट वसै सबना घट अंतर गुरमुख वर लै जाता नानक नाम मिलै वडियाई गुर कै शब्द पछाता श्री राग महला तीजा सहजै नौ सब लोई दी बिन गुर पाया ना जाए पढ़ पढ़ पंडित जोत की थके भेखी परम भुलाए गुर भेटे सहज पाया अपनी कृपा करे रजाए भाई रे गुर बिन सहज ना होए शब्द ही ते सहज उपजै हर पाया सच सोए रहाओ सहजे गाव्या थाए पवै बिन सहजै कथनी बाद सहजे ही भक्ति उपजै सहज प्यार बैराग सहजे ही ते सुख शांत होए बिन सहजै जीवन बाद सहज सलाही सदा सदा सहज समाद लगाए सहजे ही गुणी उचरै भक्त करे लिवलाए शब्दे ही हर मन वसै रसना हर रस खाए सहजे काल विडारिया सशरण आई पाए सहजे हर नाम वसिया सच्ची कार कमाए सेवड भागी जिनी पाया सहजे रहे समाए माया विच सहजन उपजै माया दूजै पाए।

स्वार्थ स्वाओ ना को करे, ना किश होवै काज, चित आवै ओस पार ब्रह्मो, ता निचल होवै राज। जा कहो चिंता बहुत बहुत, देही व्यापै रोग, ग्रस्त कुटुंब पलेटिया, कदे हरख कदे सोग, गौण करे चहो कुंटका, कड़ी ना बैसन सोए। चित आवै उस पर ब्रह्म, तन मन शीतल होए। काम क्रोध मोहे वस किया, किरपन लोग प्यार, चारे किलवख उन अग किए, होवा असर संघार। पोथी गीत कवित किश कदे ना करन धरिया, चित आवै उस पार ब्रह्म, ता निमक सिमरत तरिया। शास्त सिमरत वेद चार, मुखागर बिचरे, तपे तपी सर जोगिया, तीर्थ गमन करे। खटकर में खटकर माते दुगणे, पूजा करता नाए, रंग ना लगी पार ब्रह्म, ता सर पर नरके जाए। राज मिलक सिकदारिया, रस भोगन विस्थार, बाग सुहावे सोहणे, चलै हुक्म अफार। रंग तमासे बहु विधि, चाए लग रहया, चेतना आयो पार ब्रह्म, ता सर्व की जून गया। बहुत तनाड्या चारवंत, शोभा निर्मल रीत, मात पिता सुत भाइया, साजन संग प्रीत, लश्कर तरकस बंद बंद।

भगवती रहत जुगता, योगी कहत मुक्ता, तपसी तप है राता, मुनि मोन धारी, सन्यासी ब्रह्मचारी, उदासी उदास राता, भगत नमे प्रकारा, पंडित वेद पुकारा, ग्रस्ती ग्रस्त धर्माता, एक शब्दी बहुरूप अवधूता, कापड़ी कौते जागूता, एक तीर्थ नाता, निरहार वर्ती आपरसा, एक लूकना देवै दर्शा, एक मन ही ज्ञाता, घाट ना किन ही कहाया, सब कहते हैं पाया, जिस मेले सो भगता, सगल उगत उपावा, त्यागी शरण पावा, नानक गुर चरण पराता, एक ओवंकार सतगुर प्रसाद, श्री राग महला पहला कर तीजा, जोगी अंदर जोगिया, तू भोगी अंदर भोगिया, तेरा अंत ना पाया, सुरग मछ पयाल जियो, हौ वारी हौ वारणै, कुर्बान तेरे नाम नो रहाओ, तुद संसार उपाया, सिरे सिर तंदे लाया, वेखै कीता अपना, कर कुदरत पासा ढाल जियो, प्रगट पहारै जापदा, सब नावै नो परतापदा, सतगुर बाज ना पायो, सब मोही माया जाल जियो, सतगुर कौ बल जाइयै, जित मिले परम गत पाइयै, सुर नर मुन जन लोच दे, सो सतगुर दिया बुझाए जियो, सत संगत कैसी जानिए, जिथे एको नाम वखाणिए, एको नाम हुक्म है, नानक सतगुर दिया बुझाए जियो, एहो जगत परम भुलाया, आपो तो दुखवाया, प्रताप लगा दोहागणी, भाग जना के नाही जियो, दोहागणी क्या निशानिया, खसमो कुथियां फिरे निमाणिया, मैले वेस्त ना कामनी, दुखी रहन विहाय जियो, सुहागणी क्या कर्म कमाया, पूर्व लिखिया फल पाया, नदर करे कह अपनी, आपे लय मिलाए जियो, हुक्म जिन्ना नो मनाया, तिन अंतर शब्द वसाया, सही आसे सोहागणी, जिनसै नाल प्यार जियो, जिन्ना भाणे कार सियाया, तिन विचों परम चुकाया, नानक सतगुर ऐसा जानी है, जो सबसे ले मिलाए जियो, सतगुर मिलिया फल पाया, जिन विचों अह करण चुकाया, दुरमत का दो कटिया, भाग बैठा मस्तक आए जियो, अमृत तेरी बाणिया, तेरिया भगता हृदय समाणिया, सुख सेवा अंदर रखे है, अपनी नजर करे निस्तार जियो, सतगुर मिलिया जानिया, जित मिलिया नाम वखाणिए, सतगुर बाज ना पायो, सब थकी कर्म कमाए जियो, हौ सतगुर विटों घुमाया, जिन परम पुला मार्ग पाया, नजर करे जे अपनी, आपे लय रलाए जियो, तू सबना माहे समाया, तन करता आप लुकाया, नानक गुरमुख प्रगट होया, जाको जोत तरी करतार जियो, आपे खसम निवाजिया, जियो पिंड दे साजिया, मेरा प्रभ सब किश पाया, आपे खसम निवाजिया, जियो पिंड दे साजिया, अपने सेवकी पैज रखिया, दोए कर मस्तक तार जियो, सब संजम रहे सियाणपा, मेरा प्रभ सब किश जानदा, प्रगट प्रताप वरतायो, सब लोग करे जयकार जियो, सब संजम रहे सियाणपा, मेरा प्रभ सब के जानदा, प्रगट प्रताप वरतायो, सब लोग करे जयकार जियो।

मात पिता सुत ने हुकनेरा माया मोह सबाई संजोगी आया किरत कमाया करनी कार कराई राम नाम बिन मुक्त ना होई बुढ़ी दूजा हेत कहो नानक प्राणी पहले पहरे छूटे गार चेत दूजे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा पर जोबन मैं मत अहनस काम व्यापिया मन जा रहा मित्रा अंदले नाम ना चित राम नाम कट अंतर नाही होर जाने रसकस मीठे ज्ञान ध्यान गुण संजम नाही जनों मरोंगे झूठे तीर्थ वर्त सुच संजम नाही कर्म धर्म नहीं पूजा नानक भाए भगत निस्तारा दुबदा व्यापै दूजा तीजे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा सरहंस अलथड़े आए जोबन कटै जरुआ जनैवन जा रहा मित्रा आव कटै दिन जाए अंत काल पछतासी अंदले जां जम पकड़ चलाया सब किछ अपना कर कर राखिया खिनमै पया पराया बुद्ध विसरजी गई सियाणप कर अवगण पछताए कहो नानक प्राणी तीजे पहरे प्रभचे तो लिवलाए चौथे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा बिरद पया तन खीण अखी अंधना दी सही बन जा रहा मित्रा कन्नी सुने ना वैण अखी अंध जीव रस नाही रहे भरा को ताना गुण अंतर नाही क्यों सुख पावे मन मुख आवण जाना खड़ पक्की कुड़ भजै बिनसै आए चले क्या मान कहो नानक प्राणी चौथे पहर गुरमुख शब्द पछाण ओढ़ के आया तिन साहयावन जा रहा मित्रा जर जर वाणा कन एक रती गुण ना समाण आवन जा रहा मित्रा अवगण खड़सन बन गुण संयम जावै चोट ना खावै ना तिस जमण मरना काल जाल जम जोहे ना साकै पाए भगत पै तरना पत सेती जावै सहज समावै सगले दुख मिटावै कहो नानक प्राणी गुरमुख छूटै साचे ते पत पावै श्री राग महला चौथा पहले पहरै रहन कैवन जा रहा मित्रा हर पाया उदर मझार हर त्यावै हर उचरै बन जा रहा मित्रा हर हर नाम समार हर हर नाम जपया राधे विच अग्नि हर जप जीवया बाहर जन्म भया मुख लागा सरसे पिता मात थीवया जिसकी वस्तो ते चेतो प्राणी कर हृदय गुरमुख विचार कहो नानक प्राणी पहले पहरे हर जपिया कृपा तार दूजे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा मन लागा दूजे पाए मेरा मेरा कर पालिया वन जा रहा मित्रा ले मा

सुंदर स्वामी धाम भगतै विश्राम आसा लग जीवते जियो मन तने गुलतान सिमरत प्रभ नाम हर अमृत पीवते जियो अमृत हर पीवते सदा थिर थीवते बिखै बन फीका जानिया भय कृपाल गोपाल प्रभ मेरे साध संगत निध मानिया सर्ब सो सुख आनंद घन प्यारे हर तन मन अंतर सीवते एक तिल नहीं विसरै प्राण आधारा जप जप नानक जीवते डखणा जो तौ कीने अपने तिन्ना को मिलियो है आपे ही आप मोयो हो जस नानक आप सुनियो है संत प्रेम ठगौरी पाए री जाए गोविंद मन मोया जियो संतन कै प्रसाद आगाद कंठे लग सोया जियो हर कंठ लग सोया दुख सब जोहया भगत लखन कर वस भए मन सर्व सुख उठे गोविंद तुठे जन्म मरना सब मिट गए सखी मंगलो गाया इच्छ पुजाया बौण ना माया होया कर गै लीने नानक प्रप्यारे संसार सागर नहीं पोहया डखना साई नाम अमोल कीम ना कोई जान दो जिन्ना भाग मथा है से नानक हर रंग मान दो संत कहते पवित्र सुनते सब धन लिखती कुल तारिया जियो जिन कौ साधु संग नाम हर रंग तिन्नी ब्रह्म विचारिया जियो ब्रह्म विचारिया जन्म सवारिया पूर्ण कृपा प्रभ करी कर गै लीने हर जसो दीने जो ना तावै नह मरी सतगुर दयाल कृपाल भेटत हरे काम करो लो मारिया कथ ना जाय अकथ स्वामी सत कह जाय नानक वारिया श्री राग महला चौथा वणजारा एक ओंकार सतनाम गुर प्रसाद हर हर उत्तम नाम है जिन सरिया सब कोय जियो हर जी सबे प्रतपालदा घट घट रमैया सोए सो हर सदा त्याई है तिसबने अवर ना कोए जो मोहे माया चितलाए दे से छोड़ चले दुख रोए जन नानक नाम त्याया हर अंत सखाई होए मैं हर बने अवर ना कोए हर गुर शरण आई पाई है मन जारिया मित्रा वड भाग प्राप्त होए रहाओ संत जना मन पाईया हर किने ना पाया नाओ विच हम मैं कर्म कमाऊं दे ज्यो वेसवा पुत ननाओ पिता जाता होई है गुर तुठा करे पसाओ वड भागी गुर पाया हर अहनस लगा पाओ जन नानक ब्रह्म पछाणिया हर कीर्त कर्म कमाओ।

तोर मस्तक हर प्रभ लिखिया जन नानक नाम ते आए। मन हर हर प्रीत रंग लगाए वडभागी गुर पाया गुर शब्दी पार लंघाए रहाओ। हर आपे आपो पाएंदा हर आपे दे वैले हर आपे परम भुलाएंदा हर आपे ही मत दे। गुरमुखा मन परगास है से विरले के हम बलिहारी तिन कहो जिन हर पाया गुरमते। जन नानक कमल परगासिया मन हर हर उठड़ाओ है मन हर हर जपन करे हर गुरसरण आई भज पाओ जिंदु। सब किल विख दुख पर हरे रहाओ घट घट रमैया मन वसै क्यों पाई कित भत। गुरपुरा सतगुर भेटिए हर आए वसै मन चित। मैं तर नाम आधार है हर नामे ते गत मत। मैं हर हर नाम विसाहो है हर नामे ही जत पत। जन नानक नाम ते आया रंग रतड़ा हर रंग रत। हर त्यावो हर प्रभ सत गुरबचनी हर प्रभ जानिया सब हर प्रभ ते उत्पत। रहाओ जिन कहो पूर्व लिखिया से आए मिले गुरपास। सेवक पाए वन जा रहा मित्रा गुर हर हर नाम प्रगास। तन तन वन जवा पारिया जिन वखर लद्याड़ा हर रास। गुरमुखा दर मुख उजले से आए मिले हर पास। जन नानक गुर तिना पाया जिन्ना आप तुठा गुणतास। हर त्यावो सास गिरास मन प्रीत लगी तिना गुरमुखा। हर नाम जिन्ना रहरास रहाओ एक ओंकार। सतगुर प्रसाद श्री राग की वार महला चौथा श्लोका नाल श्लोक महला तीजा। रागा विच श्री राग है जे सच तरे प्यार। सदा हर सच मन वसै निश्चल मत अपार। रतना मूलक पाया गुर का शब्द विचार। जेवा सच्ची मन सच्चा सच्चा श्री रियाकार। नानक सच्चा सतगुर सेवे है सदा सच वापार महला तीजा। होर बिरहा सब धात है जब लग साहिब प्रीत ना होए। एहो मन माया मोहया वेखण सुन ना होए। सह देखे बिन प्रीत ना उपजै अंधा क्या करे। नानक जिन अखी लीतिया सोई सच्चा दे पौड़ी। हर इको करता एक इको दी बाण हर। हर इक सह दा है अमर इको हर चित तार। हर तिस बिन कोई नाहे डर भ्रम पौ दूर कर। हर तिसै नो सालाहे जे तुद रखै बाहर घर। हर जिसनो होए दयाल सो हर जप पौ बिखमतार। श्लोक महला पहला। दाती साहेब संधियां क्या चलै तिस नाल। एक जा गंदे ना लहन एक ना सुत्यां दे उठाल। महला पहला। सिदक सबूरी साधका सबर तो सा मलाए का। दीदार पूरे पाए सा थाओ नाही खाए का। पौड़ी सब आपे तो दियो पाए कै आप कर लाई। तू आपे वेख वेखदा अपनी वड्याई। हर तुदो बाहर किश नाही तू सच्चा साई। तू आपे आवरदा सबनी थाई। हर तिसै त्यावो संत जनों जो ले छड़ाई। श्लोक महला पहला। फकड़ जाति फकड़ नाओ सबना जिया इका शाओ। आपो जे को पला कहाए नानक ता पर जापै जा पत लेखै पाए। महला दूजा। जिस प्यारे स्यो ने हो तिस आगै मर चलिया। त्रिग जीवन संसार ता कै पाछै जीवना पौड़ी। तुदे आपे धरती साजी है चंद सूरज दोए दीवे। दस चार हट तुद साजिया वापार करीवे। इकना नो हर लाभ दे जो गुरमुख थीवे। तिन जम काल ना वे आपै जिन सच अमृत पीवे। ओए आप छुटे परवार स्यो तिन पिछे सब जगत छुटीवे। श्लोक महला पहला। कुदरत करके

सरै सरैयत करै विचार, बिन बूझे कैसे पावै पार। सिदक कर सिजदा मन कर मकसूद, जेह तिर देखा ते तिर मौजूद। महला तीजा, गुरसभा एव ना पाई है, ना नेड़ै ना दूर। नानक सतगुर तां मिलै, जा मन रहै हदूर। पौड़ी सप्त दीप सप्त सागरा, नव खंड चार वेद दस अष्ट पुराणा। हर सबना वे तू वरदा, हर सबना पाणा। सब तुझै ते आवै जी जंत, हर सारंग पाणा। जो गुरमुख हरिया राज दे, तिन्हौ कुरबाणा। तू आपे आ वरदा, कर चोज विडाणा। श्लोक महला तीजा। कलो मसाजनी क्या सदाई है, हृदय ही लिख ले हो। सदा साहेब कै रंग रह, कऊ न तूट सने हो। कलो मसाजनी जाए सी, लिखिया पी ना ले जाए। नानक सह प्रीत ना जाए सी, जो तुर छोड़ी सचै पाए। महला तीजा। नदरी आमदा नाल न चलई, वेखो को वे उपाए। सतगुर सच दृढ़ाया, सच रहो लिवलाए। नानक सबदी सच।

पाए, जब तब संयम भाणा सतगुरु का करमी पल्लै पाए। नानक सेवा सुरत कमावनी, जो हर भावै सो थाए पाए पौड़ी। हर हर नाम जपो मन मेरे, जित सदा सुख होवै दिन राती। हर हर नाम जपो मन मेरे, जित सिमर तो सब किलविख पाप लहाती। हर हर नाम जपो मन मेरे, जित दाल दो दुख भुख सब लै जाती। हर हर नाम जपो मन मेरे, मुख गुरमुख प्रीत लगाती। जित मुख भाग लिखिया तुर साचै, हर तित मुख नाम जपाती। श्लोक महला तीजा। सतगुर जिनी ना सेवयो, शब्द ना कीतो विचार। अंतर ज्ञान ना आयो, मृतक है संसार। लख चौरासी फेर पया, मर जमै होए खुवार। सतगुर की सेवा सो करे, जिसनो आप कराए सोए। सतगुर विच नाम निधान है, कर्म प्राप्त होए। सच रते गुर शब्द सिओ, तिन सच्ची सदा लिव होए। नानक जिसनो मेले ना विछड़ै, सहि समावै सोए। महला तीजा। सो भगवती जो भगवंत जाणै, गुर प्रसादी आप पछाणै। धावत राखै इकत कर आणै, जीवत मरै हर नाम वखाणै। ऐसा भगवती उत्तम होए, नानक सच समावै सोए। महला तीजा। अंतर कपट भगवती कहाए, पाखंड पार ब्रह्म कदे ना पाए। पर निंदा करे अंतर मन लाए, बाहर मल धोवै मन की जूठ ना जाए। सत्संग स्यों बाद रचाए, अंदिन दुखिया दूजै पाए रचाए। हर नाम ना चेतै बहु कर्म कमाए, पूर्व लिखिया सो मेटना ना जाए। नानक बिन सतगुर सेवे मोख ना पाए पौड़ी। सतगुर जिनी त्याया से कड़न सवाही, सतगुर जिनी त्याया से तृप्त आगाही। सतगुर जिनी त्याया तिन जम डर नाही, जिन का होवा कृपाल हर से सतगुर पैरी पाही। तिन ऐथै उथै मुख उजले, हर दरगह पैंदे जाही। श्लोक महला दूजा। जो सिर साई नानवै, सो सिर दीजै डार। नानक जिस पिंजर

अमृत वर्ष है अनहद बाणी मंतन अंतर सांत समाणी तृप्ता गाय रहे जन तेरे सदगुर किया दिलासा जियो जिसका साथ तिसते फल पाया कर कृपा प्रभ संग मिलाया आवन जान रहे वडभागी नानक पूर्ण आसा जियो माज महला पंजवा मीहो पया परमेसर पाया जी जंत सब सुखी वसाया गया कलेश पया सुख साचा हर हर नाम संभाली जियो जिसके सेत नहीं प्रतपारे पार ब्रह्म प्रपय रखवारे सुनी बेनंती ठाकुर मेरे पूर्ण होई काली जियो सर्ब जिया को देवन हारा गुर प्रसादी नगर निहारा जल थल महियल सब त्रिपताने साधु चरण पखाली जियो मन की इच्छ पुजावन हारा सदा सदा जाई बलिहारा नानक दान किया दुख भंजन रते रंग रसाली जियो माज महला पंजवा मन तन तेरा तन पी तेरा तू ठाकर स्वामी प्रभ मेरा जियो पिंड सब रास तुम्हारी तेरा जोर गोपाला जियो सदा सदा तू है सुखदाई निव निव लागा तेरी पाई कार कमावा जे तुद पावा जा तू देह दयाला जियो प्रभ तुम ते लहण।

माज महला पंजवां सबे सुख पए प्रभु तुठे गुरपुरे के चरण मन मुठे सह समाध लगी लवे अंतर सोरा सोई जाने जियो आगमा गोचर साहिब मेरा कड़कड़ अंतर वर्तै नेरा सदा लिप्त जिया का दाता को विरलाया पछाणे जियो प्रमृण की हे निशानी मन को सच्चा हुक्म पछाणी सह संतोख सदा तृप्ता से अंध खसम कह पाणे जियो हथी दित्ती प्रभ देवन हारे जन्म मरण रोग सब निवारे नानक दास किए प्रभ अपने हर कीर्तन रंग माणे जियो माज महला पंजवा कीनी दया गोपाल गुसाई गुर के चरण वसे मन माही अंगीकार की आतन करता दुखा डेरा टाहया जियो मंतन वसिया सच्चा सोई बिखड़ा थान न दिसै कोई दूत दुश्मन सब सज्जन होए एको स्वामी आया जियो जो किश करे सो आपे आपे बुद्ध सियाणप किशु ना जापे अपने संतान आप सहाई प्रभरम भुलावा लाया जियो चरण कमल जन काया धारो आठ पहर राम नाम वापारो सहज आनंद गावे गुण गोविंद प्रभ नानक सर्ब समाया जियो माज महला पंजवा सो सच मंदर जे सच धियाई है सोरदा सुहेला जित हर गुण गाइय सा धरत सुहावी जित वसै हर जन सच्चे नाम विटो कुर्बानो जियो सच वडाई कीम ना पाई कुदरत कर्म ना कहना जाई त्याए त्याए जी वै जन तेरे सच शब्द मन मानो जियो सासा लाहन वडपागी पाई है गुर प्रसादी हर गुण गाई है रंग रते तेरा तुद भाव है सच नाम निशानो जियो सच्चे अंत ना जाने कोई थान थन अंतर सच्चा सोई नानक साहित्य आई है सद ही अंतर जामी जानो जियो माज महला पंजवा रैन सुहावड़ी दिन सुहेला जप अमृत नाम संत संग मेला कड़ी मूर्त सिमरत पल वन्या जीवन सफलत थाई जियो सिमरत नाम दोग सब लाथे अंतर बाहर हर प्रभ साथे पै पाओ परम खोया गुरपूरै देखा सबनी जाई जियो प्रभ समरथ वाडी ऊचा पारा नौनद नाम परे पंडारा आद अंत मध प्रभ सोई दूजा लवै न लाई जियो

माज महला पंजवा अथ तू है आगे आपे जी जंत्र सब तेरे थापे तुद बिन अवर ना कोई करते मैं तारे ओठ तो मारी जियो रसना जब जब जी वै स्वामी पार ब्रह्म प्रभ अंतर जामी जिन सेव्या तिन्ही सुख पाया सो जन्म ना जुवै हारी जियो नाम अवखद।

हुआ। गुरमुख होवै सो एको जाणै, एको सेव सुख पावणिया। जी जंत सब शरण तुम्हारी, आपे धर देखै कच्ची पक्की सारी। आंदन आपे कार कराए, आपे मेल मिलावणिया। तू आपे मेलै वेखै हदूर, समय आपरिया भरपूर। नानक आपे आप वरतै, गुरमुख सो जी पावणिया। माज महला तीजा, अमृत बाणी गुर की मीठी। गुरमुख विरलै किनै चख डीठी। अंतर प्रगास महारस पीवै, दर सच्चा शब्द विजावणिया। हां वारी जीओ वारी, गुरचरणी चित लावणिया। सतगुर है अमृत सर साचा, मन नावै मैल चुकावणिया। रहाओ तेरा सच्चे किनै अंत ना पाया, गुरप्रसाद किनै विरलै चित लाया। तुद सा लाहे ना रजा कभू, सच्चे नावै की भुख लावणिया। एको वेखा अवरना बिया, गुरप्रसादी अमृत पिया। गुर कै शब्द तिखा निवारी, सहजे सुख समावणिया। रतन पदार्थ पल्लर त्यागै, मनमुख अंधा दूजै पाए लागै। जो बीजै सोई फल पाए, सुपने सुख न पावणिया। अपनी कृपा करे सोई जन पाए, गुर का शब्द मन वसाए। आंदन सदा रह पै अंदर, पै मार परम चुकावणिया। परम चुकाया सदा सुख पाया, गुर प्रसाद परम पद पाया। अंतर निर्मल निर्मल बाणी, हर गुण सहजे गावणिया। सिमरत शास्त्र वेद बखाणै, भरमे पूला तत न जाणै। बिन सतगुर सेवे सुख न पाए, दुखो दुख कमावणिया। आप करे किसे आखै कोई, आखण जाइयै जे भूला होई। नानक आपे करे कराए, नामे नाम समावणिया। माज महला तीजा, आपे रंगे सह सुभाए। गुर कै शब्दा रंग चढ़ाए, मन तन रत्ता रसना रंग चलूली। पै पाए रंग चढ़ावणिया। हाँ वारी जीओ वारी, निरपो मन वसावणिया। गुर कृपा ते हर निरपो त्याया, बिख भौजल सब तरावणिया। रहाओ मनमुख मुक्त करे चतराई, नाता तोता थाए ना पाई। जेहा आया तेहा जासी, करे अवगण पछो तावणिया। मनमुख अंधे किछु ना सूजै, मरण लिखाए आए नहीं बूजै। मनमुख कर्म करे नहीं पाए, बिन नावै जन्म गवावणिया। सच करनी शब्द है सार, पूरे गुर पाईए मुख द्वार। अंदर बाणी शब्द सुनाए, सच राते रंग रंगावणिया। रसना हर रस राती रंग लाए, मंतन मोया सहज सुभाए। सहजे प्रीतम प्यारा पाया, सहजे सहज मिलावणिया। जिस अंदर रंग सोई गुण गावै, गुर कै शब्द सहजे सुख समावै। हाँ बलिहारी सात निविटों, गुर सेवा चितलावणिया। सच्चा सचो सच पतीजै, गुर प्रसादी अंदर पीजै। बै सुथान हर गुण गावै, आपे कर सत मनावणिया। जिसनो नदर करे सो पाए, गुर प्रसादी हों मैं जाए। नानक नाम वसै मन अंतर, दर सच्चै सोभा पावणिया। माज महला तीजा, सतगुर सेवै वड्डी वड्याई। हर जी चिंत वसै मन आई, हर जियो सफलियो बिरख है अमृत। जिन पीता तिस्तिखा लहावणिया। हां वारी जियो वारी, सच संगत मेल मिलावणिया। हर सत संगत आपे मिलै, गुर शब्दी हर गुण गावणिया। रहाओ सतगुर सेवी शब्द सुहाया, जिन हर का नाम मन वसाया। हर निर्मल हों मैं मैल गवाए, दर सच्चै सोभा पावणिया। बिन गुर नाम ना पाया जाए, से साधक रहे बिल लाए। बिन गुर सेवे सुख ना होवी, पूरे पाग गुर पावणिया। एहो मन आरसी।

पूर्ण पूर रहया सब आपे गुरमत नदरी आवणिया आपे आप निरंजन सोई जिन सिर जीतन आपे गोई नानक नाम समाल सदा तू सहजे सच समावणिया। माझ महला तीजा से सच लागे जो तुद पाए सदा सा सेवै सह सुभाए सच्चै शब्द सच्चा सा लाही सच्चै मेल मिलावणिया। हाँ वारी जियो वारी सा सा लाहणिया सच ते आए नो से सच राते सच्चे सच समावणिया। रहाओ जह देखा सच सबनी थाई गुर प्रसादी मन वसाई तन सच्चा रसना सच राती सच सुन आख वखानणिया। मनसा मार सच समाणी इन मन डीठी सब आवण जानी सतगुर सेवे सदा मन नि चलो निज कर वासा पावणिया। गुर कै शब्द हृदय दिखाया माया मोह सब जलाया सचो सच्चा वेख सालाही गुर शब्दी सच पावणिया। जो सच राते तन सच्ची लिव लागी हर नाम समालै से वड भागी सच्चै शब्द आप मिलाए सत संगत सच गुण गावणिया। लेखा पढ़ी जे लेखे विच होवै ओह अगम अगोचर शब्द शुद्ध होवै आन दिन सच शब्द सालाही होर कोई ना कीमत पावणिया। पढ़ पढ़ थाके सांत ना आई तृष्णा जाले शुद्ध ना काई बिख विहाजै बिख मोह प्यासे कूड़ बोल बिख खावणिया। गुर प्रसादी एको जाना दूजा मार मन सच समाणा नानक एको नाम वरतै सब अंतर गुर प्रसादी पावणिया। माझ महला तीजा वर्ण रूप वरतै सब तेरे मर मर जमै फेर पवै कनेरे तू एको नेह चलो अगमया पारा गुरमती बूझ बुझावणिया। हाँ वारी जियो वारी राम नाम मन वसावणिया जिस रूप ना रेखिया वर्ण ना कोई गुरमती आ बुझावणिया। रहाओ सब एका जोत जाने जे कोई सतगुर सेवे प्रगट होई गुप्त प्रगट वरतै सब थाई ज्योति ज्योत मिलावणिया। तिसना यगन जलै संसारा लोभ अवमान बहुत हंकारा मर मर जन्मै पत गवाए अपनी बिरथा जन्म गवावणिया। गुर का शब्द को विरला बूजै आप मारे तांत्र पवन सूजै फिर ओह मरै ना मरना होवै सहजे सच समावणिया। माया मह फिर चेतना लाए गुर कै शब्द सद रह समाए सच सा लाहे सब घट अंतर सचो सच सुहावणिया। सच सा लाही सदा हजूरे गुर कै शब्द रहया परपूरे गुर प्रसादी सच नदरी आवै सच्चे ही सुख पावणिया। सच मन अंदर रहया समाए सदा सच निह चलो आवै ना जाए सच्चे लागै सो मन निर्मल गुरमती सच समावणिया। सच सालाही अवरना कोई जित सेवै सदा सुख होई नानक नाम रते विचारी सचो सच कमावणिया। माझ महला तीजा निर्मल शब्द निर्मल है बाणी निर्मल जोत समहे समाणी निर्मल बाणी हर सा लाही जप हर निर्मल मैल गवावणिया। हाँ वारी जियो वारी सुखदाता मन वसावणिया हर निर्मल गुर शब्द सा लाही शब्दो सुनत सा मिटावणिया। रहाओ निर्मल नाम वसिया मन आए मन तन निर्मल माया मोह गवाए निर्मल गुण गावै नित साचे के निर्मल नाद बजावणिया।
ਨਿਰਮਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਮੁਵਾ ਤਿੱਥੈ ਮੋਹ ਨਾ ਮਾਇਆ। ਨਿਰਮਲ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਅਤਿ ਨਿਰਮਲ, ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਮਨ ਵਸਾਵਣਿਆ, ਜੋ ਨਿਰਮਲ ਸੇਵੇ ਸੋ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ, ਹਉਮੈ ਮੈਲ ਗੁਰ ਸਬਦੇ ਧੋਵੈ। ਨਿਰਮਲ ਵਾਜੈ ਅਨਹਤੁਨ ਬਾਣੀ, ਦਰ ਸੱਚੈ ਸੋਭਾ ਪਾਵਣਿਆ। ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਸਭ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੈ, ਨਿਰਮਲ ਮਨੁਆ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਪਰੋਵੈ। ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਲੱਗੇ ਵਡਭਾਗੀ, ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਸੁਹਾਵਣਿਆ। ਸੋ ਨਿਰਮਲ ਜੋ ਸਬਦੇ ਸੋ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਮਨ ਤਨ ਮੋਹੈ। ਸੱਚ ਨਾਮ ਮਲ ਕਦੇ ਨਾ ਲਾਗੈ, ਮੁਖੀ ਉਜਲ ਸੱਚ ਕਰਾਵਣਿਆ। ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੈ ਦੂਜੈ ਪਾਏ, ਮੈਲਾ ਚੌਕਾ ਮੈਲਾ ਥਾਏ, ਮੈਲਾ ਖਾਏ ਫਿਰ ਮੈਲ ਵਧਾਏ, ਮਨਮੁਖ ਮੈਲ ਦੁਖ ਪਾਵਣਿਆ। ਮੈਲੇ ਨਿਰਮਲ ਸਭ ਹੁਕਮ ਸਵਾਏ, ਸੇ ਨਿਰਮਲ ਜੋ ਹਰ ਸਾਚੇ ਪਾਏ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਅੰਤਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਮੈਲ ਚੁਕਾਵਣਿਆ। ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਗੋਵਿੰਦ ਉਜਲ ਉਜਲ ਹੰਸਾ, ਮਨ ਬਾਣੀ ਨਿਰਮਲ ਮੇਰੀ ਮਨਸਾ। ਮਨ ਉਜਲ ਸਦਾ ਮੁਖ ਸੋ ਹੈ, ਅਤ ਉਜਲ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਣਿਆ। ਹਾਂ ਵਾਰੀ ਜਿਉ ਵਾਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ। ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਕਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਵਣਿਆ। ਰਹਾਓ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਵੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਗੁਰ ਕੈ ਪੈ ਉਜਲ ਹਉਮੈ ਮਲ ਜਾਏ। ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹੇ ਭਗਤ ਕਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਸੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ। ਮਨੁਆ ਨਾਚੈ ਭਗਤ ਦਿਰੜਾਏ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਮਨੈ ਮਨ।

माया मोहे जोहे अजम काले, माया मोह इस मने निचाए अंतर कपट दुख पावणिया। गुरमुख भगत जा आप कराए, तन मन राता सही सुभाए। बाणी वजाए शब्द वजाए।

अंदर महल रतनी परे भंडारा गुरमुख पाए नाम अपारा। गुरमुख वणजे सदा वापारी लहा नाम सद पावणे आ। आपे वथ राखै आपे दे गुरमुख वणजै केई के। नानक जिस नदर करे सो पाए कर कृपा मन वसावणे आ। माज महला तीजा हरे आपे मेले सेव कराए गुर कै शब्द भाव दूजा जाए। हर निर्मल सदा गुणदाता हर गुण मैं आप समावणे आ। हाँ वारी जियो वारी सच सच्चा हिरदय वसावणे आ। सच्चा नाम सदा है निर्मल गुर शब्दी मन वसावणे आ। रहाओ आपे गुरदाता कर्म विधाता सेवक सेवै गुरमुख हर जाता। अमृत नाम सदा जन सो है गुरमत हर रस पावणिया। इस गुफा मैं कथान सोहाया पूरे गुर हौ मैं भरम चुकाया। अंदर नाम सलाहन रंग राते गुर कृपा ते पावणिया। गुर कै शब्द एहो गुफा विचारे नाम निरंजन अंतर वसै मुरारे। हर गुण गावै शब्द सुहाए मिल प्रीतम सुख पावणे आ। जम जा गाती दूजे पाए कर लाए नाम पूले देस जाए। कड़ी मोहत का लेखा लेवै रतियो मासा तोल कढ़ावणे आ। पेयड़ै प्रचेते नाही दूजे मुठी रोवै ताही। खरी कुवाल्यो क्रूप कुलखणी सुपने पर नहीं पावणे आ। पेयड़

अवर ना कोई, गुर प्रसाद करे नाम देवै, नामे नाम समावणे आ। तू आपे सच्चा सिरजनहारा, भक्ति परे तेरे भंडारा, गुरमुख नाम मिले मन भीजै, सहि समाद लगावणे आ। आन दिन गुण गावा प्रभ तेरे, तुसा लाही प्रीतम मेरे, तुद बिन अवर ना कोई जाचा, गुर प्रसादी तू पावणे आ। आगमया गोचर मित नहीं पाई, अपनी कृपा करै तू लह मिलाई, पूरे गुर कै शब्द तिहाई है, शब्द सेव सुख पावणे आ। रसना गुणवंती गुण गावै, नाम सलाहे सच्चे पावै, गुरमुख सदा रह रंग राती, मिल सच्चे सोभा पावणे आ। मनमुख कर्म करे अहंकारी, जुवै जन्म सब बाजी हारी, अंतर लोभ महा गोबारा, फिर आवणे जावणे आ। आपे करता दे वडियाई, जिनको आप लिख तुर पाई, नानक नाम मिलै पौ भंजन, गुर सबदी सुख पावणे आ। माज महला पंजवा घर पहला, अंतर अलख न जाई लखिया, नाम रतन लै गुजा रखिया, अगमै गोचर सब